یاسین والقرآن

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.

के खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मैं आज फिर सोच रहा हूँ कि ऐसे ही खा लूँ या

कैसा है, थोड़ा सा बताएं कि ई कॉमर्स एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है आपका।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Monday, 8 Zilhaj, 25th May 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Sadia Sattar. First, the headlines. Prime Minister says Pakistan fully supports agenda of China's president for lasting peace in the region and beyond. Shahbaz Sharif will hold meetings with Chinese leadership in Beijing today to advance cooperation in diverse sectors under CPAC Phase 2. Pakistan and Bangladesh have underscored importance of academic diplomacy and people-to-people linkages in strengthening bilateral relations. Hajj rituals began with convergence of over 1.8 million intending Hajj pilgrims at Mina last night. 8 Arab Islamic states have strongly condemned degrading actions of extremist Israeli minister against participants in Gaza bound during their detention.
1: This is FM
2: 101. सामने वालों का बकरा भी आ गया बाबा चले ना मंडी
3: अभी चलते हैं
4: पैसे रख लिए
3: किस लिए अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त
5: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्त से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त
1: दिस इज FM 101
6: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लारकाना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट पन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: Live, live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: This is FM 101.

चाहूँ मैं तुझे दिल से मिटाना, दिल ढूंढे एक रोज बहाना, याद करे तुझे बन के दीवाना, मुश्किल है दिल को समझाना। जब से मिला है दर्द जुदाई, कोई खुशी मेरे पास ना आई, करता रहा जिस गम से गिला मैं वो

0: कमर्शियल ब्रेक का।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: FM 101 नाल साडे ते नाल तुवाडे, क्यों जी कोई शक है क्या?

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ़ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क़याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
2: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे।
3: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबाव FM 101।

0: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवसुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मियारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
1: Smile and dial 111 111 FM.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए चीन के सदर के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। शहबाज शरीफ सी पैक के दूसरे मरहले के तहत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग के लिए आज बीजिंग में चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। रात मीना में 18 लाख से ज़ायद आज़मीन हज के जमा होने के साथ मनासिक हज का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। और 8 अरब और इस्लामी ममालिक ने गजा जाने वाले काफिले के शुरका के साथ हिरासत के दौरान इसराइली इंतहा पसंद वजीर के तौहीन आमेज सलूक की शदीद मजम्मत की है।
2: We'll be back after this short commercial break.
3: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
8: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: सुनते रहिए FM 101.1।
10: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
11: And now you are tuned into
12: FM 101.
13: FM 101.

0: Now you're tuned into
1: FM 101.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बनें।

0: गल सुने थे बे
1: Tune in to One Above FM.

0: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियत फराहम करना है, ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने, ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

0: to One Above, FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: हर इंसान का हक है कि उसकी जिंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशिफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशिफा ट्रस्ट को दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

0: Electric.
1: कि नहीं मुझे याद है सब कुछ और ऐसे मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव बंदी है, इसको तो हमें कुछ याद दिला दे कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: चलें जी ठीक हो गया जी, हम जब तक नाश्ता करते हैं और आप आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, कमर्शियल की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा सा गाना आपके लिए होगा और वो अच्छा सा गाना कौन सा होगा वो मैं बिल्कुल हाँ, फिर उसके बाद कॉल्स का सिलसिला शुरू है, टेलीफोन मेरी तरफ है और मुझे पता है कि शुरू है।
1: इस शर्ट पर हम कॉल पिक करेंगे कि सब बहुत मुख्तसर सी बात करें।
2: Yes, मुख्तसर सी बात करेंगे और मुख्तसर सी बात के साथ जो है वो
1: पैगामात
2: हाँ बिल्कुल ऐसी है। और अभी ये वाला गाना सुने और न्यूज़ की तरफ जो है बिल्कुल हम जाएंगे। और कीप लिसनिंग FM 101 चैनल पाकिस्तान।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए चीन के सदर के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान और चीन के अलीबाबा ग्रुप ने मुल्की मईशत के डिजिटल तब्दीली के अमल को तेज करने के लिए एक जामे तजवीराती लाहे अमल पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के लिए तालीमी सिफारतकारी और अवामी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया है। काफिले के शुरका के साथ हिरासत के दौरान इसराइली इंतहा पसंद वजीर के तौहीन आमेज सुलूक की शदीद मजम्मत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 हॉल लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और बात कर रहे हैं हम लेडीज लाउंज में कुर्बान ईद के हवाले से, और कुर्बान ईद के हवाले से, कुर्बानी के जानवर के हवाले से, और बाजारों में रश के हवाले से। बाजारों में बहुत ज्यादा रश है, लेकिन रश कहाँ पे है, बकरा मंडियों में रश है, जहाँ पे लोग अपना जानवर खरीद रहे हैं। और जानवर की जो जो आप कुर्बानी खरीद रहे हैं ना, इस दफा रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं, लेकिन जो लोग कुर्बानी खरीद रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बकरे, इतने प्यारे प्यारे जानवर मार्केट में मौजूद हैं, और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं ना। मैं कल देख रही थी कि ख्वातीन, कुछ ख्वातीन भी अपने अपने जानवर लेकर आई हुई हैं मंडियों में। खूबसूरत वो चीज़ लग रही होती है, और कहीं भी आप देखते हैं वो जानवरों के जो जेवर होते हैं, जिसमें वो झांझरे, जिसमें वो गले में पहनने वाली, और ये सारी चीज़ें वो बचपन की बातें, अगर हम थोड़ा सा सोचें, हम थोड़ा सा रिमाइंड करें उस चीज़ को, तो क्या होता है बचपन में ना, मेरी दादो, मेरी नानों को मैंने देखा है मेहंदी घोल के ना, तो वो लगाया करती थी। मैं कल यही सोच रही थी, मैंने कहा यार ये लगानी, मतलब ये एक ना, ये रिकॉल होती हैं आपकी मेमोरीज, रिकॉल होती हैं कि जब आपने जानवर लाना है, फिर उसको मेहंदी लगाते थे, फिर इसको लेकर घूमना, मतलब गलियों में घूमना, सब ने एक टाइम रखा होता था, और उस टाइम में अगर आप यहाँ सामने आके मेरे बैठे तो ज़्यादा अच्छा नहीं हो, पर नहीं, ऐसे मुझे गर्दन मोड़ के आपको देखना पड़ता है। अच्छा, वो क्या होता था, वो होता ये था कि फिर एक टाइम, मखसूस टाइम रखा होता था शाम के बाद ना, मतलब असर के टाइम के बाद, फिर वो अपने अपने जानवर को लेकर, अपने अपने बकरों को लेकर, बकरों को ही खासकर, बड़े जानवर जो होते हैं वो तो खैर आप की एक्सेस में ही नहीं ना होते, वो तो आपके बच्चों के को तो उनको उनके लेकर जाना भी नहीं चाहिए, और वो फिर लेकर जाना, फिर घूमना, बड़ा मज़ा आना। अब एक चीज़ का ख्याल ये भी रखना है कि जानवर जो है ना, वो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, दूर दराज से, तो इसलिए वो अब जहाँ पे होंगे ना, वो उनके लिए नई जगह हैं, तो इसलिए जब आप पैदल चल रहे हैं या आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वहाँ कोई जानवर ऑलरेडी मौजूद ना हो। बहुत सारे हादसात हम जो हैं वो देखते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। सवाल मैंने आज से आपसे ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास पैसा आ गया है, इजाफी पैसा, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, यूटिलाइज कहाँ करेंगे। पहली सोच क्या आती है कि यार मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं ये काम करूँगा या ये काम करूँगी। खाने के, ओ भाई खाने से हट जाया करें, खाने के, यहाँ एक बंदा मेरे सामने मौजूद है, कहते खाने में ले लो, कर लो गल, कोई हाल ता, और आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ यूटिलाइज करेंगे, ये आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका बहुत ही आसान है, फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, और कॉमेंट करके हमारे से शामिल हो जाइएगा। कुछ पैगाम आपके मेरे सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे बढ़ना है एक अदद ट्रैक की तरफ, ये ट्रैक सुनिएगा। और हमारे साथ ऑफियर कॉल पे मौजूद थी भूतनी, और भूतनी कहती हैं, देखा मुझे भूतनियाँ भी सुनती हैं कहती है आप मुझे भूल गई है, मैंने कहा जी कौन, कहती मैं भूतनी, मैंने कहा चलो ठीक है फिर क्या कहा जा सकता है, क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। आप कितना ही ज़्यादा फेमस हो सकते हो कि आप भूतों में भी फेमस हो। एनीवेज जी, सुनिए ये खूबसूरत से ट्रैक, और मेरे साथ साथ रहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा 04221100101, मुझे बताइएगा कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, मुझे ये बताइएगा, कोई एक मैसेज दे दीजिएगा ईद के हवाले से, क्योंकि ये तो आखिरी प्रोग्राम है हमारा ईद से पहले, परसों तो ईद है, परसों ईद है, परसों छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, इंजॉय करेंगे।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite Archie Subia Shafiq.

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101.9 लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबैर शफीक, 11:37 और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जी। एक दफा फिर बताती चलूं कि एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे मैं अपनी पोस्ट अपडेट कर चुकी हूं, उस पे कमेंट करके शामिल होइए। हमारे साथ किरण मौजूद थी, किरण कहती हैं जी बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप, बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू सो मच। और साजदा मौजूद थी, थैंक यू सो मच साजदा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाता है, पैसा ही पैसा, फिर आप इसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, यूटिलाइज कहाँ करेंगे, क्या सोच आती है, कोई बिजनेस करना है, कोई एनजीओ बनानी है, क्या करना है, ये आपने मुझे बताना है। आपके बहुत सारे पैगाम मेरे सामने मौजूद हैं, उनको मैं शामिल करूंगी। लड़के आ गए तुम, ओके जी। हमें अमरजा चौधरी साहब सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमरजा चौधरी साहब, आपकी कॉल भी आई थी। रियाज भट्टी साहब हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत सारे पैगाम आपने भेजे। एम हफीज साहब हैं, थैंक यू जी, रियाज भट्टी ने फिर पैगाम भेजा, थैंक यू सो मच। इशफाक हैं, कहते हैं वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अमरजा चौधरी साहब, बहुत सारे फूल और चाय, शाय इतनी गर्मी से चाय अमरजा चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। और ये जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं ना, 12 के बाद कॉल करना भाई, पता नहीं तानू तो 12 के बाद कॉल्स करते हैं। अभी ऑफ एयर कॉल्स लूंगी, अभी ऑन एयर कॉल्स नहीं ले रही। अच्छा जी, अमृता चौधरी साहब कहती हैं लफ्जों में जज्बे छुपे होते हैं, हम अक्सर सिर्फ लफ्जों को देखते हैं, उनके पीछे छुपे दर्द, मोहब्बत या दुआओं को महसूस नहीं करते। कोई ठीक हो कहकर खुद को मजबूत जाहिर करता है, मगर उसके लफ्जों में छुपी थकन हम कभी नहीं पढ़ पाते। ओके, अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कुर्बान ईद के हवाले से, बात मैं कर रही हूँ कुर्बानी के जानवर के हवाले से, और बचपन की कुछ ईदों को याद कर दें तो कौन सी एक याद आपके जहन में आती है कि यार बचपन की कुर्बान ईद ऐसी होती थी, जब हम छोटे होते थे तब इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं पता होता था कि इस ईद पे इतनी तैयारी करनी है और इस ईद पे इतनी तैयारी नहीं करनी, दोनों ईदें बराबर होती थी, कपड़े हम तीनों दिनों के लेते होते थे, तीनों दिनों की हम खूब तैयारी करते थे और इन्जॉय करते थे। मुझे याद है मैंने अपनी ज़िंदगी की एक ईद जब मैं छोटी थी मैंने अपने ददयाल में यानी कि अपने गाँव में गुजारी हुई है, बहुत छोटी थी मैं, मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है, और वो जो गाँव की वो वाली ईद थी ना वो मुझे आज भी नहीं भूलती। मतलब आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे मेरी पुप्पो ने मुझे सुबह सुबह तैयार किया, और फिर वो गांव की एक घर था वो उनके घर में, उनके घर के सहन में जो है ना वो नमाज जो अदा की हमने, और वो कुल्फियाँ होती है ना, वो स्क्रीन वाली जो कुल्फियाँ होती है ना, खाई है ना वो भी, वो स्क्रीन वाली कुल्फियाँ लेकर आए, उतना वो चूरन हुआ करता था। हाँ, पता नहीं ये नहीं मुझे समझ आ रही क्योंकि इशारों की जबान में थोड़ी कम समझती हूँ, इशारों की जबान कहीं कहीं समझ आती हूँ लेकिन कहीं कहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तो तो मुझे वो भी याद है कि मतलब वो बड़ी अच्छी चांद रात की वो खुशी, एक फिर मतलब ये होता है कि चांद रात में रात 11-12 बजे तक मेहंदियाँ लगाना और फिर मेहंदी लगा के सो जाना, और सुबह को वो जो मेहंदी का डिज़ाइन था ना वो आपके मुँह पे आया होता था। अब यहाँ भी जो मैंने गाना लगाना है ना वो आप सबने मुस्कुराना भी है हंसना भी है लेकिन मैंने लगाना है, मैं क्या करूं, मेरा दिल कर रहा है। ये उन तमाम के लिए जिनके अपने प्यारे प्रदेश में मौजूद हैं और वो इस ईद पे जो है ना वो घरों को नहीं आ सकते, बिकॉज कुछ हालातों वाकयात भी ऐसे हैं ना जिसमें आप कह लो कि कन्वेंस का भी मसला है, फ्लाइट्स का भी मसला है कि वो नहीं ट्रैवल कर सकते, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आना चाहते थे इस ईद पे अपने प्यारों के पास लेकिन वो नहीं आ सके। उन तमाम के लिए ये एक सॉन्ग, उन तमाम के लिए नहीं, उन तमाम के लिए तो मैं लगाऊंगी लेकिन ये उन तमाम के लिए जो याद कर रही हैं सखियाँ, इंजॉय करें दिस ब्यूटिफुल ट्रैक यार, वन ऑफ माय फेवरेट, पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद है, बस पसंद है मुझे, इसकी बीट बहुत पसंद है। यस दिस इज फॉर यू लड़कियों।

0: This is FM 101.
1: पापा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist Subia Shafiq.
1: Ji, welcome back. This is FM 101 Live Studio. It's me, Subia Shafiq. अच्छा जी, दाल खाई मेरा यार नहीं आया, नदीम अब्बास लोने वाला को शामिल किया हमने। और बात कर रहे हैं हम कुर्बानी के हवाले से, बात कर रहे हैं हम उन अनाओं को कुर्बान करने के हवाले से जो भरी हुई है। कुर्बानी कर रहे हैं हम रिश्तेदारों से, हम नहीं बोलते उन अधिकार ते गोश्त भिजवाना ही नहीं ना, ऐ मल्लेदार अधिकार उन अधिकार गोश्त नहीं भिजवाना, उन्होंने साढ़े घर नहीं सी भिजवाया। व्हाट इज दिस, मतलब यार कुर्बानी का मकसद क्या है? आपने तो यहाँ उस मकसद को ही फौत कर दिया ना कि आप उन लोगों तक अगर तकसीम कर रहे हो या उस घर तक पहुंचा रहे हो जिस घर में ऑलरेडी कुर्बानी है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। पहुंचाओ वहां तक जहां पे जरूरत है। और मेरा उन लोगों से भी ये कहना है, उनसे गुजारिश है, जिन लोगों के हाँ फ्रिजें भरी हुई हैं, चाहे उन्होंने कुर्बानी नहीं की लेकिन फिर भी उन्होंने फ्रिजें फुल बटा फुल भर ली हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और के हक पे डाका डाल रहे हैं। लाइक डाका इट्स मीन कि आप किसी और का हक लेने जा रहे हो, आप कहीं और जो है वो किसी और तक वो चीज़ पहुंच सकती थी, वो हिस्सा किसी और तक, उस घर तक पहुंच सकता था जहां पे कुर्बानी का इतना गोश्त मौजूद नहीं है। एटलीस्ट यार बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं उनके हाँ एक दिन पहले दिन के, मतलब हम जब गोश्त भेज रहे होते हैं ना तो हम इतने छोटे छोटे हिस्से करते हैं, वो इतनी थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा उसमें गोश्त होता है कि एक टाइम का खाना भी नहीं बनता। और वो जो चार पांच बोटियां होती हैं ना उसमें भी वो चर्बी ज्यादा होती है, मतलब इस तरीके से उसकी वो की होती है डिवाइड, उसको इस तरह से किया होता है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें, तमाम चीज़ों पे ये तमाम वो पैरामीटर्स हैं जो कुर्बानी के हैं, अगर आप ये पूरे नहीं ना करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन जाने कि ये कुछ जो टर्म्स कंडीशंस है ना, इनको आपको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको पूरा नहीं करते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर तो बस दिखावा है ना, और दिखावा फिर आप सोशल मीडिया पे करते रहें जितना मर्जी। अच्छा, कल मैं एक रील देख रही थी, उसमें वो कहते हैं कि भाई जो हम इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, हम जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं, हमने कोई अच्छी चीज़ है, कोई इस तरह कैसी भी चीज़ है, हमने वो दिखानी है, हमने शो ऑफ करवानी है। मुझे लगता है कि अच्छा, हर बंदे की डिपेंड करता है ना कि वो जो चीज़ शो ऑफ करवा रहा है उसका पर्पस क्या है, बिहाइंड पे रीज़न क्या है, सामने वाले बंदे का प्रोस्पेक्टिव क्या है उसके बारे में। अब आप हर एक चीज़ को जो है वो क्लियर नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं उसकी दे सकते। बाज़ दफ़ा पर्पस आपका जो होता है ना वो कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना वो उसको किसी और तरह से लेकर जा रहा होता है और कुछ और समझ रहा होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मैं बहुत दफ़ा इस पर बात करती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर आपको किसी की किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो मुझे लगता है कि उस इख्तलाफ को आप तहजीब के दायरे में रहकर उस तक पहुंचाएं ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। मतलब अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, मैं उस काम की बात कर रही हूँ जो आपकी भलाई के लिए है, जो माशरे में तरक्की का सबब बनने के लिए है या उसमें पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए है, ऐसा कुछ काम है उसमें आप जाके कोई ऐसा एक कमेंट करो जो उसकी दिलाजारी करे। जैसे मैंने मदर्स डे पे बात की कि लोग इससे हट के अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे ईद है, लोग खुशी मनाएंगे, लोग अपने प्यारों को गिफ्ट्स भी देंगे, अगर सपोज किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। भाई आप उसके दिल में तो नहीं घुसे हुए, आपको तो नहीं पता है कि वो दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो लोग सामने आना दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें वो अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो वो भी बांटना छोड़ दें, और जो लोग नहीं बांटते वो तो नहीं बांटते, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक बात मैं जरूर कहूंगी कि नजर जो है ना वो बरहक है, इसलिए बहुत सारी चीजें जहाँ कहा करें ना किया करें वहां पे दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें हासदीन की हसदीन के हसद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे और बद नजर से महफूज रखे, बाकी सब ओके है। एनीवेज जी, यहाँ भी आपके कुछ पैगामात को मैं शामिल करना चाहूंगी जिन्होंने हमें अभी अभी ट्यून इन किया, उनको बताते चले कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे। आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे बताएंगे आपके पास दौलत आ रही है, दौलत पैसे तो आप क्या करेंगे, कहाँ उसे यूटिलाइज करेंगे और कहाँ बांटना पसंद करेंगे या कहाँ आप जो है इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। सज्जाद अली लाडला साहब हमारे साथ, लड़के कैसे हो तुम, कहते हैं मेरी तरफ से प्लीज परदेसियों के लिए अगर आप एक सॉन्ग, परदेसियों के लिए अभी मैंने एक सॉन्ग लगाया ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद दूसरा सॉन्ग लगाऊंगी, वो स्पेशल जो है ना वो परदेसियों के लिए होगा। दानी बुखारी सैयद हमारे साथ, तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो तुमने तो नहीं, तुम्हारा क्या बिगड़ा है या बिगाड़ा है, मेरे ख्याल से बिगाड़ा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे बस दिल बना के दो, कागज दे, बताएं जरा पेंसिल से, बीच में लाल रंग भी भर के दूं। दानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मोहम्मद सदीक दार हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम आरजे ज़ुबिया आपी एंड ऑल स्वीट लिसनर FM 101 शो इज अ वेरी नाइस। मोहम्मद सदीक दार फ्रॉम नीलम वैली, ठंडा पानी, आय हाय जब आप कहते हैं ना यकीन जाने दिल करता है उन वादियों में जाने को, जैसे आजकल जितनी गर्मी है ना मुझे लगता है एक ना मेरे पास तो अच्छा जी पैसे आए ना तो मैंने तो वो नीलम वैली में एक घर ले लेना है और बस, ये गर्मियों के सीजन के कोई तीन को महीने उधर बंदा गुजार रहा है, जिंदगी बन जाती है। मैं कहती हूँ एनीवेज जी, सज्जाद अली लाडला कहते हैं हाय ओए ओए कमाल ग्रेट आरजे कुड़ियां हाहा कमाल सॉन्ग, मेरा यार नहीं आया है ना, अच्छा लगा ना, मजे का था ना, कहते जी हाँ जी आ गया मैं ग्रेट आरजे साहिबा, ना शहजादा हूँ दिलों का ना शायर हूँ लफ्जों का, जुबान बस साथ देती है मैं बातें दिल की करता हूँ, कमाल कर दिया लड़के। गुल यासीन नाज, अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू जी। अच्छा जी यहाँ भी गाना लगाते हैं, क्या ख्याल है कौन सा गाना लगाना चाहिए हमें,

आपने हमें ज्वाइन करना है एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे और वहाँ पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पोस्ट पे जाके आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये गाना जो है ना वो मैंने लगा दिया और इसको एंजॉय करें। एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक बिन रॉय मूवी से शामिल कर रही हूँ और इस ट्रैक को जब आप देखेंगे ना, मतलब आप अगर सुन रहे हैं वो तो एक अलग वाइब है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं ना तब जो वाइब वो एक अलग किस्म की वाइब होती है। आप देखिएगा जरूर, चांद रात की एक अलहदा ही उन्होंने मॉल क्रिएट किया हुआ है। और मुझे ना पहले पहले मैं तब सोचती थी ऐसी चांद रात कहाँ मनाई जाती है, लेकिन अब आप लाहौर का इछरा बाजार देखें यार, इतना खूबसूरत कर दिया उन्होंने। और अगर आप मून मार्केट की बात करते हैं तो मून मार्केट में एक अलग वाइब होती है, चूड़ियों की, झुमकों की। वैसे वो जो कौन सी थी कश्मीरी चूड़ियां लास्ट टाइम आई थी, इस टाइम इस दफा कोई ट्रेंड आया ये भी मुझे बताएं, कौन सा ट्रेंड आया इस दफा, आया कोई? अच्छा चलिए उस पर भी बात करते हैं कौन सा ट्रेंड आया। स्टिक अराउंड।

0: This is FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist Subia Shafiq.

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 हॉल लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में टाइम हो चुका 12:08। आज हम बात करें ईद की तैयारियों के हवाले से। कुर्बान ईद की जहां बात करते हैं वहां पे बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। और जनाब जैसे हम ईद या किसी भी त्यौहार की बात करते हैं, हम कहते हैं ना दर्जी जो है ना वो भाई उनका एक अलहदा ही लेवल होता है। तो कुर्बान ईद पे जो कसाई लोग होते हैं ना उनका भी एक अलग लेवल होता है। वो नहीं आता आ रहे कि तो बस टाइम लेने पड़ रहे हैं, एक एक महीना पहले से जो है ना वो बुकिंग चल रही है। और फर्स्ट बुकिंग जो है वो इतने में और सेकंड बुकिंग इतने में, ये सारे मामला चल रहे हैं। एनीवेज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आगे पास बहुत पैसा आता है तो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको, ये मुझे बताना है। कुर्बान ईद के हवाले से हम बात करें। 04211100101। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, तुसी आगे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिदा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ।
1: कमाल का शो कर रही, इतना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
0: थैंक यू सो मच। मुझे ये बताओ साजिदा कि ईद की तैयारियाँ हो गई?
1: तो भी आधी रह गई हैं, लेकिन
0: हले भी आधी रह गई हैं। कौन सी आधी रह गई हैं? चूड़ियाँ झुमके तो नहीं रह गए?
1: हाँ, चूड़ियाँ झुमके और जूता रह गए, बाकी मैंने सूट और पर्स लिया।
0: फिर तो कुछ भी ना, अभी तो समझो फिर कख नहीं हुआ।
1: अभी अधूरी है ना।
0: अच्छा हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ साजिदा, पैसा आ जाता है बहुत ज्यादा, कहाँ इन्वेस्ट करोगी?
1: पहली बात तो मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाए ना तो मैं एक बकरा लूंगी।
0: ठीक हो गया।
1: जो शॉपिंग भी ना करते, मैं उनको शॉपिंग करवाऊंगी, बच्चों को या लड़कियों को जो सूट वगैरह। और बकरे से ज्यादा ना मुझे ज्यादा वो पहने के कपड़े मुझे खुशी होगी।
0: ठीक है।
1: और मैंने हमें ईद ना मनाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी हो, हमें तो मजा आता है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच साजिदा।
1: मैं सलाम कहना चाहूंगी
0: जल्दी जल्दी।
1: हाँ जी, रिमशा को, हमना को और कमलनाथ को, अनिला जी को, चीकू को, छोटे तारिक और शहजादा लाडला को, बुद्धि जट को,
0: पहुंच गया जी। थैंक यू। और बॉडी जेट की हमें कॉल भी आया था, सजाद अली लाडला को सलाम का। जी इधर तो मैं कहती हूँ मैंने सारी नेकियाँ ऐसे ही समेटनी है, एक का सलाम दूसरे तक पहुंचा के। थैंक यू सो मच साजिदा, बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपने ये बताना है कि आप की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और आप मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। आर जे जुबिया शफीक एंड ऑल आर जे एफएम टीम को, अच्छा जी आपने सबको सलाम किया, बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली लाडला साहब हैं, क्या कहते हो लड़के? वाओ नाइस लुकिंग, वो भी आज रेड रेड में। हां जी ऐसा ही है, ऐसा तो होता है ना फिर। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम। कौन आप जी, क्या हाल है? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन हमारे साथ, कहां से?
2: बोधी जट गल कर रहे हैं, आप जी रावी तो।
0: जी जी
2: हाँ जी, आप जी माशाल्लाह बहुत सोहना प्रोग्राम, तो माशाल्लाह सोहनिया। मेरे को पैसा होगा तो आप ही, मैं ना कोई माड़े जिया या बेटिया शादी करांगा, और मेरा ही ख्वाहिश है मेरी इंशाल्लाह। तो जेड़े बचन के पैसे तो मैं रान राग जायली सरकार दे रोजे ते जाना चाहवांगा, उदू बाद भावे मेन मौत भी आ जाए तो मेनू कोई शिकवा नहीं।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी ख्वाहिश। थैंक यू सो मच जी फॉर योर कॉलिंग। ये हमारे साथ बॉडी जॉइंट मौजूद थे। और जनाब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो फिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये मुझे आपने बताना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमारे साथ शामिल होइएगा। हमें साथ सुन रहे हैं, साथ थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं। और ये एक सॉन्ग मैं लगा रही हूँ, इस सॉन्ग को इंजॉय कीजिएगा। वापस आऊँगी, आगे करते हैं मज़ीद बातचीत आपके ढेर सारे मैसेजेस के साथ। आपके कुछ पैगाम सामने मौजूद हैं, लेकिन इस गाने के बाद उसको शामिल करती हूँ।
3: ये सितारे तुम्हारी,
0: ये
3: चांद तुम्हारी जमीन पर लगता,
0: ये चीज
3: कैसी आसमां से हमारी जमीन पर

0: This is FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: म्यूजिक, लॉकर एंड रियल टॉक, ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन लेडीज लाउंज विद योर फेवरेट आरजे ज़ुबिया शफीक।
7: यस, विद योर फेवरेट आरजे ज़ुबिया शफीक। हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है 0422111001। अस्सलाम वालेकुम जी।
8: वालेकुम अस्सलाम।
7: थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही।
8: वालेकुम अस्सलाम
7: जी। जी, कौन हमारे साथ? कौन हमारे साथ?
8: हाफिज मुखातिब हूं, जिला भावलपुर से।
7: जी सर, क्या कहिएगा?
8: जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो मैं एंजॉय कर रहा हूं, आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूं।
7: सर, आपको एक दिन आपको आपके पास बहुत पैसा आ जाता है तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे आप उसे?
8: ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है।
7: अब आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है?
8: दुनिया के इतने जज्जाते हैं कि पता कहाँ पर इन्वेस्ट करें।
7: ठीक हो गया, मतलब नहीं समझ आ रही।
8: हाँ, मैंने आपको ईद उल फितर पे सुना था, ईद उल फितर पे शो पे पहली मरतबा मैंने आपको वहाँ पे सुना था।
7: अच्छा जी, अब आपने ईद उल अज़हा पे सुन लिया, सुनेंगे इंशाल्लाह ईद के दूसरे दिन। जी
8: जी, कॉल मैंने अभी की है और आप मुझे ये बता दें कि ज़ैनब अरशद का शो कब होता है?
7: ज़ैनब अरशद का शो मैं पता करके आपको अभी बता देती हूँ।
8: जी ठीक,
7: थैंक यू सो मच। थैंक यू
8: जी, आप सबको ईद मुबारक, तमाम लिसनर को।
7: आपको भी ईद मुबारक, थैंक यू जी। ये चीज मेरे हम अजीज नहीं पता कि कहाँ लगाने हैं पैसे, अन्ने पैसे आ गए और कोई पता नहीं है कहाँ लगाने हैं। मासूम लोग। अच्छा जी, सज्जाद अली लाडला कहते हैं, नाइस टॉपिक में, टॉपिक पे यही कहूंगा, अगर मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं सबसे मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा और अपने गरूर तकबर को अपने सर नहीं चढ़ाऊंगा और ना खुद में जो अना है ना उसको नहीं रखूंगा और कुछ अपनी जरूरतें जितना हो सकेगी अपनी जरूरत पूरी करूंगा उनकी जरूरत। अच्छा, और उनकी जरूरत पूरी करूंगा जिनको वाकई ही जरूरत होगी उनकी मदद करूंगा। ओके, आपका पैगाम पहुंच गया सजाद, बहुत अच्छी सोच है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। और मोहम्मद उर्स लगा रही हमारे साथ, थैंक यू सो मच जी आपका मैसेज करने का।

0: बना बता दें कलेजी बनाने की, सख्त हो जाती है ना कलेजी। हाँ,
1: अगर मेरे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी ना तो मैं आरजे जो हमारे बड़े हैं ना आरजे
0: डॉक्स,
1: क्या नाम है मैं भूल गई हूँ,
0: आरजे वाह वाह वाह कमाल कर देता, ये मैं रिकॉर्ड करके उनको भेजूंगी,
1: उनको दे दूंगी कि ऐसा 101 का एक और स्टूडियो बना दे और फीमेल आरजे कितना डबल शो कर दे, उनकी बड़ी मेहरबानी।
0: नहीं तो लेदर स्टूडियो जरूर बनाना, इसी स्टूडियो में हमारी डबल करवा देना।
1: उनको दे दूंगी ना, ज्यादा सारी दौलत होगी तो वो खुद ही बांट देंगे आप सबके लिए।
0: चले
1: बनाने की टिप ये है कि मसाला भून ले, पेस्ट बना ले, प्याज की लहसुन अदरक की टमाटर और हरी मिर्च डाल के ना तो सारी पेस्ट बना के ना तो वो पतीली में डाल दे, प्रेशर में डाल दे तो अच्छा, क्योंकि गैस नहीं आती तो घी भी डाल दे, तो नमक मिर्च हल्दी जीरा पाउडर गरम मसाला जो जो मसाले डालते हैं तो वो अच्छी तरह भून लेना उसको, तो भून के जब वो कलेजी बकरे के अंदर से निकलेगी ना तो एक घंटा पहले बाहर रखनी है, एकदम नहीं पकानी है।
0: एक घंटा इंतजार कौन करता है, इधर बकरा जबा हुआ उधर कहते हैं नाश्ता करने,
1: ठंडी हो जाएगी ना, बहुत ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रख के ठंडी कर लेना तो गरम गरम नहीं पकानी चाहिए, तो वो ना ठंडी हो जाएगी तो उसको ना डाल के ना मसाले में भून के थोड़ा सा पानी डाल ले ऊपर प्रेशर कुकर की सीटी लगा दे, 5 मिनट में ना आपकी बड़े मजे की ना
0: गुड हो गया। थैंक यू सो मच फरी जी, छा गई है आप,
1: अल्लाह
0: हाफिज। वेखो कहते ने लहदा स्टूडियो बनाएंगे और उनको आरजे आरजे वो आपके बड़े आरजे ना, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा। ये रिकॉर्ड कर लेना है और ये जब ये उनके कॉल प्रोग्राम में कॉल करेंगी ना तब ये रिकॉर्डिंग चलानी है। एनीवेज थैंक यू सो मच फरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं पूछ रही हूँ आपके पास दौलत आ जाएगी आप कहाँ उसे खर्च करेंगे, ये मुझे आपने बताना है। मैसेज कर सकते हैं फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके शामिल हो जाइएगा। एक अदद कॉल लेती है और फिर चलते हैं एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ कहाँ से?
2: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मा, आज फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने मुझे।
2: जी Okay. ये बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है और मैम ने बहुत सख्ती से वो ऑर्डर भी दिया था, युजेंद्र भाई का शो था कल परसों, तो मैंने इतना ट्राई किया नहीं कॉल मिली,
0: आज मिल गई तो ना आपकी कॉल।
2: मेरी बात सुने, ये जो हम लाहौर से हम कॉल करते हैं जो इस्लामाबाद स्टेशन जो उस पे आते हैं आज, वो कौन सा नंबर है, कैसे मिलती है कॉल, कैसे कॉल करनी है ये बता दें।
0: मैं आपको उसका तरीका भी बता देती हूँ जी,
2: आपने बताना है फिर अभी जब मैं कॉल बंद करूंगी ना तो आपने एक दो मिनट बाद बताना है, क्योंकि मैंने हैंड फ्री लगानी है फिर सेट करना है, एक ही मोबाइल है मेरे पास
0: मेरी बहन के छोटे छोटे दुख।
2: चलो मैं आपको बहुत शौक से सुनती हूँ, आप भी मेरी तरह आरजे डॉक्स की बहुत बड़ी फैन है, आप भी उनके शो में आती है ना, वो नाम लेते हैं जुबिया शफीक भी सुन रही है हमें, तो उनके शो में भी कॉल नहीं लगती, वो भी कोई टिप शेयर कर दे कैसे हम कॉल कर सकते हैं।
0: ओके मैं आपको उसकी टिप भी देती हूँ। ओके
2: आप डॉक्टर हैं?
0: जी मैं डॉक्टर हूँ।
2: कौन से डॉक्टर हैं आप?
0: ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन से डॉक्टर हूँ। थैंक यू सो मच विस्मा कॉल करने का।
2: ठीक है अपना स्टार भी बताना है आपने।
0: ओके हो गया, ओके हो गया, क्या बताना
2: है? अपना स्टार, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना फेवरेट कलर, ये सारा कुछ अपने बारे में आपने बताना है। ठीक है
0: ओके ओके थैंक यू जी। ओए होए थैंक यू सो मच बिस्मा। यहाँ पे हम एक सॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सॉन्ग सुनिएगा अभी वापस आते हैं, आपके कुछ पैगामात को शामिल करूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है कि अगर आपके पास दौलत आती है, इजाफी दौलत आ जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा आपने कहाँ खर्च करनी है, कोई एक बंदे के जहन में होता है ना यार मेरे पास पैसे आएंगे तो फिर मैंने ये करना है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है उन्हें, ये मुझे आपने बताना है। बताने का तरीका बहुत ही आसान, 04211100101 नंबर डायलिंग नंबर।
3: मुकाबे नु करके
0: एतबार देनिया
3: दी हां, मुकाबे
0: जाते हुए ना मैंने आपको एक बड़ी मजे की टिप बता के जानी है, रेसिपी बता के जानी है इंस्टेंट कलेजी बनाने की। ए मैं लब रही है ना पिछले 3-4 दिन से, ये बड़ी मजे की रेसिपी मिली है मुझे। दिस इज फॉर यू।

0: Music, laughter and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite RJ Subia Shafiq.
1: Ji janab. This is FM 101 Lahore Live Studio. It's me, Zubia Shafiq. Aur 12:30 hamare saath line mein caller maujood. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Kaisi hain?
2: Alhamdulillah, main bilkul theek thaak. Aap jaisi pyari. Masoom si.
1: Aaye haaye. Rimsha taiyari ho gayi Eid ki?
2: बिल्कुल बस क्या आप ही हमारी जैसे कि क्या तराइयां होती बता सकती
1: हैं तराइयां कैसी होती है तराइयां
2: आज तो कसम से अभी मैं थकी हुई अभी अभी मैं बाहर से आई हूँ धूप इतनी तेज हाँ। और मामा के साथ में सामान लेकर आई हूँ घर का तो मेरी आवाज देखिए कैसी हो गई है
1: ओहो अच्छा रिमशा रिमशा के पास आ गए बहुत सारे पैसे रिमशा कहाँ लगाएगी वो पैसे
2: मैं पैसे वो ना आप ही अगर मेरे पास पैसे आ गए ना तो मैं जो मेरे बाबा ने घर खरीदा था
1: अच्छा
2: वो उसे मुकम्मल करूंगी मैं
1: वेरी गुड अच्छी सोच
2: और क्योंकि मेरे बाबा का एक वो ख्वाहिश थी वो उन्होंने खुद बनाना था वैसे तो वो मकान लेकिन अगर मेरे पास पैसे आ जाए ना तो वो मकान मैं खुद बनाऊं और अपने बाबा की वो ख्वाहिश पूरी करूं
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा और कुछ कहोगी रिमशा
2: और आपको एडवांस में
1: ईद मुबारक
2: आपने मेरी ईद नहीं भेजी
1: मैं भेजूंगी ना ईद पे बकरे
2: के साथ ईद पे नहीं अभी एडवांस में भेज देना ताकि मैं शॉपिंग कर लूंगी
1: शॉपर में डाल
2: शॉपर में डाल
1: ये उड़ जाएगा ये शॉपर वाली ईद है ये शॉपर में ये शॉपर वाली ईद है ये पैसों वाली ईद नहीं है लड़की
2: हाँ ये भी है शॉपर वाली ईद है बिल्कुल ठीक है
1: शॉपर इकट्ठे कर लें इसलिए
2: शॉपर में पैसे नहीं गोट आएगा
1: बिल्कुल थैंक यू रिमशा बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया बड़ी बड़ी क्यूट सी कॉलर है अच्छा जी कुछ मेगावाट आपकी शामिल करते हैं मोहम्मद अकबर हमारे साथ है जब कहते हैं जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया ओए होए किसकी जिंदगी में मोहम्मद अकबर ये भी तो बताएं सजाद अली लाडला कहते हैं लगता है ये सॉन्ग आपको बहुत पसंद है यस वन ऑफ माई फेवरेट
3: मुबारकबाद देनी सी तुहानू भी मुबारक कहनी सी आपी जी
1: खैर मुबारक जी कौन हमारे साथ
3: मेरी आपी है साजदा नु सलाम ते रमशा आपी है सने नीला आपी ने कमलनाथ आपी नु सलाम ते फरी आपी नु पाकिस्तान जिंदाबाद गोदी जट गल कर रहे आप जी रावी तो ते अवान टोन मेरी रहायश है रावी दे कंधे ते डेरा है अपना
1: ओके हो गया
3: ठीक माशाल्लाह बकरे दी कुर्बानी करनी ते मैं अपनी अपनी आपी वास्ते दिल जेड़ा ना मैं फ्रिज च रख रहा फ्रीज करके ते मैं तुसी दसना जिदन तुहाडा शो है ते उत्थे मैं फ्राई करके ते लै आवांगा अपनी आपी वास्ते
1: डन हो गया बहुत शुक्रिया जी थैंक यू
3: ओके जी अल्लाह
1: अच्छा मैं ना पिछले कुछ दिनों से आपके सामने रील्स आ रही होती है और रील्स में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है तो क्लेजी बनाने की इंस्टेंट एक रील मैंने देखी वो बड़ी अच्छी मुझे लगी और एक तो टिप ये है क्लेजी बनाने की वो ये कि आपने कभी भी क्लेजी में शुरू में नमक नहीं डालना जब पूरी क्लेजी पक जाए तब आपने उसमें नमक डालना जब क्लेजी लेकर आते हैं तो क्लेजी चूंकि बहुत जल्दी पक जाती है 10 से 12 मिनट के अंदर हार्डली पक जाती है ये जो हम उसको 25-25 मिनट का कुकर लगा लेते हैं ना इस पे क्लेजी बहुत सख्त हो जाती है एक टिप तो ये है कि आपने नमक नहीं डालना पकाते हुए भूनते हुए बिल्कुल नमक नहीं डालना जब फुल क्लेजी पक जाए एंड पे आपने सॉल्ट उसको मिक्स करना सेकेंड ये कि जब क्लेजी लेकर आए तो आपने जस्ट सम सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा आपने विनेगर डालना है यानी कि जिसको वो क्या विनेगर को क्या बोलते हैं सिरका सिरका डालना है 2 चम्मच सिरका फिर पानी डालना है उसको उसके अंदर क्लेजी को डिप करना है और डिप करके निकाल लेना है उससे जो होगा जो इजाफी जो वो ब्लड वगैरह होता है ना वो साफ हो जाएगी बिल्कुल क्लेजी सेकेंड टिप मैंने आपको ये दे दी थर्ड टिप ये कि आप जो है ना उसके बाद उसको साफ करके निकाल लिया फिर आपने दही में सारे मसाला जात को मिक्स करना है जो भी आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जिसमें आप नमक आप मिर्च आप जितने भी मसाले आपने डालने हैं उनको मिक्स कर लिया उस दही में उस क्लेजी को 15 से 20 मिनट रख दें उतनी देर आप अपना मसाला भूने जिसमें आप प्याज अदरक और जूस इंस्टेंट जो भी मसाला आपने भूनना है उसको भूने और उस दही के मिक्सचर के साथ जो क्लेजी है उसको उसमें डाल दें उसको थोड़ा सा भूने उसके ऊपर टमाटर की एक लेयर रखें और उसको दम लगा दें 10 से 15 मिनट के अंदर आपके कलेजे तैयार। देखा कैसी कमाल रेसिपी मैंने आपको दी है। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: जी वालेकुम सलाम। हैप्पी टू बी अ स्टेट अब्दुल हमीद फरुखाबाद। तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम, अल्लाह पाक तुम्हारी खैर करे।
1: इलाही आमीन। अब्दुल हमीद साहब एक दिन के लिए असब को सलाम पहुंच गया जी। एक दिन के लिए आपके पास, एक दिन कह रही हूँ, आपके पास आते हैं जी बहुत सारे पैसे, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसे?
4: अभी मैं तो दुआ करूंगा जिन्हें भी साढ़े वन वन दिया मैनू ही मिले तो सारे मिले, मैं आते ही दुआ करूंगा। मैनू कले नु नहीं चाहिए इतने पैसे।
1: ओके हो गया जी। ओके
4: वन वन की टीम बात है, जिन्हें साढ़े भैन भरा सुनते सारे अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सारे कुर्बानी की तफीक दे, पैसे रकम गाड़िया गुड़िया वगैरह हर एक दे।
1: डन हो गया, डन हो गया। बहुत शुक्रिया जी।
4: ठीक है भाजी।

0: जी तो मैनू पागल कर गया है। और जी हमारे साथ लाइन पे एक कॉलर काफी टाइम से मौजूद हैं, 04221100101। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे खलूस की गहराई से नहीं मिलते।
0: अच्छा जी,
1: मेरे खलूस की गहराई से नहीं मिलते, वे झूठे लोग हैं, सच्चाई से नहीं मिलते। वो सब मिलते हुए हमसे मिलने आता है, हम इस तरह किसी हरछाई से नहीं मिलते। है साथ साथ मगर परछे मिजाजों का, मेरे कदम मेरी परछाई से नहीं मिलते। और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सके भाई से नहीं
0: मिलते। कमाल,
1: बहुत शुक्रिया। एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सतबिस्मिल्लाह से जी आए हैं।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और तमाम सुनती समातों का अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: नशे की तरह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अंदाज और शो। और मैं कहूँगा कि मैं टॉपिक पे यही कहूँगा कि मैं उन लोगों के काम आऊंगा जिनको जरूरत है,
0: ठीक है,
1: और जिनके पास जूता नहीं है उनको जूता दो, और जिनके को खुशियां को तरसते हैं ना उनको खुशियां दिखा सकूं अपनी किसी भी राह से। तो मैं चाहूंगा अगर हम जिंदगी में वो रास्ता अपनाएं जिसका मकसद नस्ल इंसानी की बका हो, तो दुनिया का कोई बोझ हमें झुका नहीं सकता।
0: अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने,
1: बहुत शुक्रिया। और ईद पे से यही कहूंगा कि अपनी अना को इंसान को खत्म करना चाहिए और अपनी मैं को,
0: बिल्कुल
1: ना के कुर्बानी ही।
0: अच्छी बात की आपने।
1: और सब 29 मत को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक हो, आपको भी, और शापर शापर शापर अल्लाह।
2: आतिफ
0: साहब क्या कहिएगा?
2: आप जो पूछते हैं ना पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, तभी जो नया मॉडल आया ना उसका लैंड क्रूजर का,
0: वाह,
2: वो लेके हाँ? सिर्फ सैर सपाटा होटलिंग और सिर्फ सैर सपाटा,
0: सही हो गया।
2: साथ में ये दुआ होगी पुराने वाकिफकार लोग मिले,
0: हाँ ये चीज,
2: वो उनसे गलती फिर हो दोबारा के पैसे दो तो उसके सामने फजूल खर्च किया, उसको नहीं देने फजूल खर्च कर देने।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया,
2: ठीक ना, ये अब ये ख्वाहिश है,
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।
2: उनको नहीं देने,
0: उनको नहीं देने, उनको नहीं देने, ठीक है, ओके।
2: हाँ जी, सैर सपाटा करना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ होटल पे खाना खाना और घूमते रहना,
0: ओके हो गया। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। उनको नहीं देने, ये अच्छा है। अच्छा जी, रॉक कासिम हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच जी। और आंटी फरी जिस तरह प्यारा बोलती हैं, उनकी बातें प्यारी होती हैं। अच्छा जी, सजाद कहते हैं कि आंटी फरी जिस तरह प्यारा बोलती हैं उनकी बातें प्यारी होती हैं। इब्रार हीरो हमारे साथ, वेरी गुड शो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ओके। मुजम्मिल नज़ीर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल नज़ीर, अहमद टेलर फ्रॉम बीबी पाक दामन लाहौर से, आपका शो बहुत नाइस है, वन सॉन्ग फोर सितारों, तुम तो सो जाओ, इतनी सुबह को सितारों को सिला के क्या करना है लड़के, रात को सोएंगे ना वो। मोहम्मद अकबर हमारे साथ, अच्छा ये पढ़ लिया मैंने मैसेज, एक कॉल लेते हैं फिर एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर आएंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम।
0: अमारा बेग हमारे साथ मौजूद। अमारा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि आपको पैसे मिलते हैं बहुत ज्यादा और कहाँ इन्वेस्ट करोगी उसे?
3: मैं ओल्ड हाउस बनाऊंगी बेग के नाम से, और दूसरा ये कि जो उम्रे पे जाने की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक बुलाए और बुलावा आए और जरूर जाऊंगी। और जैनब बाबी का शो हफ्ते वाले दिन 1 से 3 लगता है, और आपने मुझे कहा था ना कि ऑफर मेरी आके होनी है, बहुत ज्यादा तारीफें करनी है।
0: अल्लाह हू अकबर, झूठी लड़की।
3: मैंने कहा वो आप लास्ट में कर दूं कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आती
0: हैं। तुम्हारे पैसे ओवर एक्टिंग के कट, ओवर एक्टिंग के पैसे कट।
3: खुश रहे, आबाद रहे, एडवांस में ईद मुबारक और हज की बहुत
0: बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया हमारा, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू। पता नहीं क्यों दिल कर रहा था, लगा दूं ये दिल ले जाने की जी हाँ करके। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे ये चीज।

0: अच्छा जी, ये कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको साथ में लेते हैं। और मैंने उनको अभी कहा वेट पे जाएं, कहते हैं नहीं मैं इतना ही बहुत खुश हूँ कि मेरी पाकिस्तान में कॉल लग गई है। मैंने कहा नहीं नहीं आपको ऑन एयर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: जी
1: कैसी आप? आपसे ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन आपने नाम बताया अपना।
1: जी जी मोहसिन।
0: अच्छा मोहसिन मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा, कितनी देर हो गई है आपको गए हुए पाकिस्तान से?
1: 10 ईयर प्लस हो गए।
0: ओके, फिर तो ये सवाल पूछना नहीं बनता। अच्छा आप मुझे ये बताएं,
1: कौन सवाल है?
0: आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे?
1: मैं सच्ची बताऊं कि फेक बताऊं?
0: नहीं नहीं बताना तो सच्ची है ना फिर।
1: हाँ यकीन करें, सब कुछ देख लिया हुआ है, एंजॉय भी कर लिया हुआ है, लेकिन अभी मजा खत्म हो गया। दिल करता है किसी की हेल्प करे, एंजॉय करे लाइफ को, किसी के साथ अपना, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि प्यार बांटे, किसी को जरूरत है उसका हेल्प करे, अपने आप को नहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए इंसान को।
0: बिल्कुल,
1: तो ये मेरा दिल करता है, लेकिन इतना भी मैं लेवल आप पे नहीं गया, लेकिन जितना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सोच अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा। और कुछ कहोगे मोहसिन?
1: नहीं बस ये कि जब कॉल करने से पहले बहुत कुछ याद आता है, लेकिन जब पाकिस्तान में कॉल हो जाती है तो इतनी दूर का फासला भी है और दिल में बात, फिर कंफ्यूज होता हूँ मैं कि मैं बात कैसे करनी है, कौन सी करनी है, तो भी कॉल लगी मेरी सबसे बेस्ट बात यही मेरी।
0: थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया।
1: और आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक एडवांस, क्योंकि आपकी और हमारी सेम हो चुकी है।
0: हाँ बिल्कुल, ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू।

0: विद जैस कैश अभी आप डाउनलोड करके.
1: दिस इज FM 101.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं.
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी.
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं.
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती. मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता.
5: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है. खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं.
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो.
6: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब.
7: Music, laughter, and real talk. All waiting for you on Ladies Lounge with your favorite artist Subia Shafiq.
8: Okay, ji, हमारे साथ एक caller मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम.
9: वालेकुम सलाम, एहसन खान फ्रॉम बक्कर. क्या
8: हाल है एहसन खान, कैसे हैं आप? और मुझे जल्दी जल्दी आपने मुझे ये बताना है कि आपको बहुत सारे पैसा मिलता है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसे?
9: मेरी ये ज़ाती ख्वाहिश है इनके एक बड़े अच्छे से. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ कुछ और लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर कर सकूँ.
8: बहुत अच्छी बात, बहुत
9: तो
8: अच्छी बात.
9: क्योंकि पैसे को एक ऐसी जगह पे लगाना चाहता हूँ कि जिसके साथ और पैसा आना शुरू हो जाए और काफी सारे लोगों को फायदा.
8: वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी सोच.
9: तो सोच यही है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा. बाकी इतने बहन भाई सुन रहे हैं
8: आपका, और कहते हैं कि बहुत अच्छी सोच है कि आप पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको जो है वो आपकी वजह से, उस इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारे और घर चले. अब मैं बैक टू बैक कुछ कॉल्स लूंगी और बस फिर आपसे इजाजत चाहूंगी. अस्सलाम वालेकुम जी.
10: अस्सलाम वालेकुम.
8: वालेकुम.
10: कैसी हैं जुबिया?
8: मैं ठीक हूँ.
10: मैं पता है कब से क्या कर रही थी?
8: नंबर तो नहीं डायल कर रही थी,
10: उसके साथ साथ कुछ और भी कर रही थी.
8: क्या कर रही
10: थी? फोन मिल जा.
8: मिल गया बस जी, मिल गया. अरे लाफी, कैसी हैं आप?
10: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, हसीन हूँ, हसीन तरीन हूँ.
8: माशाल्लाह माशाल्लाह. मुझे ये बताएं, पैसा आता है बहुत ज्यादा और फिर क्या करेंगी?
10: नहीं नहीं, आप भी डॉग्स की तरह के ना, हमारे जैसा हसीन होना चाहती हो?
8: हाँ भाई, उनको तो ब्रांड जो है ना वो मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं.
10: और देखिए वो खुद ही हसीन होते जा रहे हैं.
8: हाँ देखो ना, बांटना चाहिए ना इधर उधर भी, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई पता ही नहीं है.
10: नहीं देखिए डॉग्स, ये तो बहुत बुरी बात है. आपकी बहन आपके शो में तक खा खा के कॉल में लाती है, आप उसको भी लिफ्ट नहीं करा दे.
8: ओए होए. अच्छा नीला जी, मुझे बताएं कि क्या
10: जी, वो आए तो सही और समझ ये नहीं.
8: समझो समझो, पैसा बहुत ज्यादा कहते हैं, पैसा आ रहा है बहुत ज्यादा, ये नहीं समझ आ रही आना कितो है.
10: आप ये पूछे किथे किथे ला रहा है.
8: ये बात
10: हर पसे जिधर जिधर समझ आनी
8: लाई जाओ बस,
10: बढ़ी जाओ, खाई जाओ, ऐश करो, मौज करो ना, पैसे ने कोई नाल थोड़ी जाना.
8: Exactly. अच्छा कुछ
10: जी जी,
8: कुछ लोग होते हैं ना, वो पैसा आता है तो वो कहते हैं बस रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा.
10: करी जाओ, आप लगे जावांगे
8: भाई, बुरे वक्त में आप ही ना हुए तो क्या करेंगे.
10: किले मकोड़े उनकी मौत हो जाएगी.
8: हाँ बिल्कुल ऐसी.
10: नहीं नहीं, नोटों की खुशबू सूंघेंगे उनको, टुकेंगे. हाय हाय
8: हाय. हाँ बिल्कुल ऐसी.
10: बता पूछे, ये अपने हाथ से दे दो, किसी पे लगाओ, किसी के काम आ जाओ.
8: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल
10: लगाओ. और इससे ये है कि अपने हाथ से दिया हुआ फिर कल को आपके अपने बड़ा काम आएगा.
8: बिल्कुल ऐसी है.
10: आगे जाके आज कर जाएंगे वो जो खर्च कर जाएंगे ना, वही बना जाएंगे,
8: वही बना जाएंगे, वही रहता है जो खर्च कर दिए,
10: वही रहता है. बिल्कुल,
8: बहुत अच्छी,
10: वही रहता है.
8: बिल्कुल अनिला जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया.
10: कलेजी की रेसिपी बहुत जबरदस्त थी, मेरे पास भी थी पर मेरी कॉल ही नहीं मिलती, तो मैं की करा फिर उन्हें.
8: देखो फिर मिल गई है ना.
10: मैं क्या, मैं सिरका नहीं पा सकती बाजी, मेरा तो गला खराब हो जाता
8: है यार. नहीं वो आपने उसे बस डिप करके पानी के साथ और आपने बस निकालना है.
10: आपकी रेसिपी बहुत अच्छी थी है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ उसमें सिरका तो जरूरत नहीं पड़ती और उसमें कलेजी की कोई मुश्किल भी नहीं रहती और बहुत सुपर होती। किसी टाइम आपको वो भी बताऊंगी
8: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ईद के प्रोग्राम में मुझे लाजमी तौर पे बताइएगा।
10: हाँ जरूर जरूर, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, एडवांस ईद, और आपको भी बहुत, सबके लिए बहुत ही नेक तमन्नाएं, जितने मेरे बहन भाई आते हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं, फरियापी के लिए भी। थैंक यू सो मच रिबिया, टेक केयर।
8: थैंक यू जी, थैंक यू तमाम परदेसियों, लड़कों

0: अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि आपके पास पैसा आता है तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसे। साथ में कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें ऐसे ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: लाहौर से रानी।
0: रानी जल्दी जल्दी बताओ, पैसा आता है बहुत ज्यादा, कहाँ पे खर्च करोगी उसे?
1: गरीबों की मदद करेंगे।
0: डन हो गया, डन हो गया, थैंक यू सो मच। चलें जी, ये थी हमारी लास्ट कॉलर। और बात हम कर रहे थे कि पैसा अगर आपके पास आता है, हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की कि पैसा वही रह जाना है एंड पे जो आपने खर्च कर दिया अच्छे कामों में। कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट जब भी करें ना तो दो चीज़ें ज़रूर करें, कोई ऐसा सदका जारिया, कोई ऐसी चीज़ कर जाएं जो आपके मरने के बाद वो जारी रहे। इन दी सेंस ऑफ, आप किसी की पढ़ाई पे जब तक आप, वो बच्चा आगे आगे आगे चीज़ें चलती जाएंगी वो आप तक उसका सवाब पहुँचता जाएगा। सेकेंड थिंग के कोशिश करें कि किसी को अच्छी बात बता जाएं, उस अच्छी बात की वजह से, उस अच्छे काम की वजह से, उस अच्छी चीज़ की वजह से आप तक जो चीज़ें आपके मरने के बाद भी वो चीज़ें बरकरार रहेंगी, ये चीज़ तो ठीक है। तीसरा ये बात कि डेफिनेटली कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल करें जो मुस्तहिक हैं। और यहाँ पे मैं ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो दो दिन है ना, आज का और कल का, बहुत अच्छे, बहुत प्रीशियस डेज हैं। इनमें जो दुआ मांगेंगे वो पूरी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईद पे उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो पूरा साल इंतजार करते हैं इन दिन का। अपनी अनाओं को थोड़ा साइड पे करके उन लोगों को मना लीजिएगा जो नाराज हैं। आपसे मुलाकात होगी ईद के सेकंड डे में, फर्स्ट डे शायद मुलाकात हो लेकिन सेकंड डे तो इंशाल्लाह कंफर्म होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एडवांस ईद मुबारक, हज मुबारक। फी अमानल्लाह।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

0: ਰੁਕ ਜਾ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੋਨਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਸੀ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले हम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सारसी के लिए निहायत मुखलिसाना किरदार अदा किया है। सदर ममलुकत ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला और ब्रादर आवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है। मीना में आज़मीन की आमद के साथ मनासिक हज की अदायगी का आगाज हो गया है। और आज सुबह मर्दान में स्वात एक्सप्रेस वे पर एक मुसाफिर वैन खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 17 अफराद जाँ बहक हो गए।

0: Twitter and Instagram, FM101PBC. Follow us on Facebook, FM101 Channel Pakistan, FM101 Hits FM.
1: This is FM 101.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
6: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
8: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
5: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
4: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
6: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
7: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है जी? वसीम साहब, एहसन साहब गल कर रहे हैं।
0: जी एहसन खान, इन्ने दिन बाद मेरे भरा ने मेनू कॉल की थी, तो मैं तो मुड़ उदास होया बैठा सा।
1: बन
0: गए फुल गुलाब दे अज गोरियां बावां मिलियां सदियां बाद रे सदके जावां हैं।
1: आज फिर होना चाहिए ना।
0: बिल्कुल ठीक है सन खान, और फर्स्ट क्लास ठीक ठाक जे ना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसीम भाई, ते सारा टॉपिक भी बड़ा बढ़िया है, ते खूबसूरत गुफ्तगू हमदीप भाई ते हनीफ भाई दोवे आए माशाल्लाह। इन्हां दे क्या ही कहना, हमेशा मुस्बत और पॉजिटिव गुफ्तगू करदे ने।
0: हां
1: अल्लाह साडे ब्राह्मण सलाम, ते असल सारे अल्फाज जेड़े हैं ना, ए अगर असें किसी नूं कह दिने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर दें तो यकीन करो ओदी सुस्ती दूर हो सकती है। जे अगर थोड़ा जिहा असां भी दुखी गल्लां करना शुरू कर देवी तो होर फिर कहना तक बैठो एक होर लम्मिया पै जाएगा, उन्हें उठन दी आदत नहीं होनी।
0: कि एक बंदा अगर डिप्रेशन दा शिकार है, ओदे ते उदासी छाई हुई है और ओदे वजह तो ओ सुस्त भी हो गया, अपने काम कार नूं छड्ड के बैठा है, ओदा दिल ओदे जे नहीं लग रहा है ना, ते ओदे नाल ए होएगा कि ओ होर ज्यादा सुस्त हो जाएगा अगर असीं ओदे नाल होर डिप्रेशन वालियां गल्लां करांगे।
1: वो इस तरह ना एक बंदा हुन दिल हारी बैठे कि यार काम करना बड़ा औखा है, ऐसे ते उन्ने ते असि उन्हें कहेंगे नहीं नहीं काम हो सकदे
0: हो सकदा है,
1: अजे असि उन्हें कहे नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं धुप चढ़ गई हूँ तू ठीक कर, मैं तो उन्हें कहना चलिया मैं साफा मोंडे तरह के घर ते इंशाल्लाह शाम ही से।
0: बिल्कुल इस तरह ही, बिल्कुल इस तरह थोड़ा जा हौसला वधाने की जरूरत होती है,
1: हौसला वधाने की। और इस तरह एक बंदा थोड़ा दुखी बैठो दुखी गाने सुना लो तो होर लम्मिया पै जाएगा, जो थोड़ा जा बरार उलाट दा कोई भंगड़ा जा मजा राई दा सुना लो तो उठ के नचना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है ऐसा का मजा आया। बाकी
1: मेरे सारे भैन भरा जिन्ने सुनते पे उन्होंने मेरा अस्सलाम वालेकुम, ते साडे वास्ते दुआवां
0: डायलॉग भी ते सुने सुने जे गाने भी। की हाल है डायलॉग ना पा दईए मेरा खेल एक होर डायलॉग प्रोग्राम दे विच।

0: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक जी?
1: अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ, तुसी कैसे हो?
0: जी शुक्र अल्लाह का फरजाना जी, तुसी ठीक जे ना?
1: हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बस कुछ मेनू चिड़ चढ़दी है कि बई तुसी जेड़ा काम करना है ना, वो तुसी करो
0: करो,
1: ये बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। अच्छा, मजेदार जी गल है कि मतलब मैं बिल जमा करवाना ना अगर, तो ओदी तारीख देखी जाती है। अच्छा, हाली तो 5 दिन पे ने। अच्छा, हाली कल करा देंगे, 3 दिन पे ने। अच्छा नहीं, अच्छा आखिरी दिन भी कह रही है, रात के 12 बजे तक तारीख तो नहीं ना बदलेगी, 12 बजे तो पहले पहले जाके ATM से करवा देंगे या किसी और तरीके का करवा देंगे।
1: कसम खुदा दी, मामला मेरे घर भी चल रहा
0: है। मेरे नाल भी एक प्रॉब्लम है।
1: मैं अपने मुंडे नु कहा, मैं कहा भाई मेरी गल सुन, तू बेशक अपने वर्गों तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर मेरी बलो मेरी गल सुन, तू ए भी तो काम करना ना, ऑनलाइन तू कर दे, 2 दिन रह गए ने। कहता है मुझे, कहता हाय हाय, अभी 2 दिन पड़े, पूरे 48 घंटे, आपको क्या मुश्किल पड़ी हुई है, तो कोई दुनिया इधर की उधर तो नहीं हो जानी? अबे मैंने कहा दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम भूल जाओगे।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे।
1: अच्छा, फिर ऐसा हुआ के बाकी वो भूल गया।
0: हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि बस 11:30 बजे ओ, बिल नहीं जमा करा, चलो चलो चलो चलो जल्दी करो, बैंक में जाते हैं, ATM से बिल जमा करवाते, 11:30 बजे तू जा रहा है, 1 हफ्ते का बिल आया है। खैर, ए सुस्ती जी है, तो चलो रूटीन च शामिल होगी, बंदा मसरूफ होंगे, मगर कुछ लोग जो होंगे बेचारे बिल्कुल सुस्ती के मारे होंगे ने, उन्होंने हिला के उठा के बाना पैंदा कि यार खुदा का ना ही उठ लो।
1: मैडम
0: का गाना सुना रहे सुना जा।
1: मैडम का गाना इस वे मेन याद नहीं, एक आ रहा है मेरे ज़हन च, लेकिन ज़ुबैदा खानम दा।
0: चलो ज़ुबैदा खानम दा सही।
1: दिला
0: आहा, आहा, आहा।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट
5: सुनते रहिए FM 101.1।
6: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
7: आज हम बयान करेंगे ईद उज़्ज़ोहा के हवाले से कुरान मजीद के आयत मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, फबशरनाहु बिगुलामिन अलीम। इब्राहिम कद सद्दक्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लावल बलाउल मुबीन वफदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम और इलाही मुझे लायक औलाद दे। रब्बी हबली, ए मेरे रब, तू अता फरमा मुझसे नेकों में से मुझे, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अकलमंद लड़के की। फिर जब वो उसके साथ काम के काबिल हो गया, कहा है मेरे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा है मेरे अबू जी, मेरे वाले साहब, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबर पाएंगे। तो जब हम दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, हाँ, तो हमने उस वक्त हाल ना पूछ और हमने उसे निदा फरमाई कि इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हाँ, और इसे हमने देते हैं ऐसा ही सिला नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी और हमने बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया और हमने पिछलों में इसकी तारीफ बाकी रखी। सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम अला इब्राहिम। और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में से हैं। इनका रोज़ा साल के रोज़ों के बराबर है, इसकी हर रात का क्याम लैलतुल कद्र के बराबर है। हजरत अली सलाम ने आपके विसाल के बाद भी आपके हुक्म के मुताबिक हर साल आपके नाम की कुर्बानी गाय बकरे की देते थे। और इसमें और गाय है, ऊंट है, टीका भी किया जा सकता है। और किन पर कुर्बानी वाजिब है? मुसलमान, मालदार, आजाद और मुकीम पर। हाँ, बकरा हो 1 साल और उम्र उसकी, गाय हो 2 साल की उम्र हो, ऊंट है 5 साल की उम्र में, भेड़ का 6 माह का भी बच्चा चलेगा। हाँ, अगर किसी मैयत के नाम की कुर्बानी देनी है तो गोश्त सारा बांटना होगा। हाँ, बुजुर्गों के, साहबा कराम के नाम की भी दी जा सकती है। पैसे नहीं दिए जा सकते, कुर्बानी नहीं कबूल होगी। पैसे दे के तो कुर्बानी के पैसे दे दिए, कुर्बानी नहीं कबूल, हरगिज नहीं शरीयत कबूल करती। रात को कुर्बानी नहीं देते, सूरज गुरूब होने से पहले पहले 3 दिन देनी है, 10, 11, 12 तारीख जो चांद की है। हिस्सा का वजन करना जायज़ है, बकरी, गाय, ऊंट, तमाम खसी, गैर खसी, नर, मादा सब जायज़ हैं। हाँ, तो ये जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको उसकी खाल नहीं उतारनी। हाँ, इस तरह से इसके एहतराम है उस जानवर का भी। हाँ, ईद को रोज़ा नहीं होता, बस ये आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप मीठी ईद पे खा कर जाया करते थे मीठा, और जब बड़ी ईद आती थी तो उस दिन आके आप कुर्बानी के गोश्त से अपना खाना खोलते थे। ये रोज़ा नहीं कहलाता। हाँ, जानवर को जब भी लिटाएं बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि किबला रुख मुंह हो जाए, हाँ, और अपना दाहिना पांव उसके पहलू पर रखें, तेज छुरी से जल्द ज़बह करें और खाल इसकी सदके में दे देनी चाहिए। इसके तीन हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा फकरा को, दूसरा दोस्त अहबाब को, तीसरा अपने घर वालों के लिए। वाखर दावाना अनिलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबी।
8: दिस इज एफएम 101।
9: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
8: दिस इज एफएम 101।
10: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
9: शुक्रिया आपने
8: एफएम 101
9: किया।
10: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
9: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
10: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
8: दिस इज एफएम 101।
11: अस्सलाम علیکم. السلام علیکم ورمر ایف ایم پاکستان. ورمر ایف ایم پاکستان دے لاڈ ٹیشن تو آواز جی وسیم احمد دی پروگرام تہاڈے واسطے اسی لے کے آئے ہیں جناب. ساڈے پرونے اور نادرا عوامی آگاہی سیشن جڑا ہے تہاڈے نال اسی اس ویلے شیئر کراں گے. نادرا تے ریڈیو پاکستان لاہور دی عوامی خدمت واسطے ایک مضبوط سانجھ ہے تے پروگرام دے وچ نادرا دی جڑیاں سہولتاں نے اُدے بارے جی انفارمیشن دتی جائے گی اور ساری چیزاں تہاڈے واسطے اسی لے کے موجود ہاں. ساڈے مہمان نے جناب رضوان علی پٹی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوکل پرسن پنجاب نادرا, تے انہاں نال موجود نے سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور جناب ڈاکٹر احمد سہیل بسرا. اور یہ پروگرام تہاڈے واسطے ہنے پیش کیتا جا رہا ہے اور میں دعوت دواں گا ڈاکٹر احمد سہیل بسرا صاحب نو کہ پروگرام دا آغاز کرن.
12: وسیم صاحب تہاڈا بہت شکریہ, تسی مینوں اس سٹوڈیو دے وچ آن دی دعوت دتی. مینوں وی موقع ملیا کہ اپنے سنن والےاں تک اسی کوئی گل بات جڑی او لے کے آئیے. تو جس طرح کہ پٹی صاحب نے تہانوں دسیا ہے, میں اپنے سنن والیاں نال مخاطب ہاں کہ اسی نادرا دے جڑے مختلف کام نے ساڈے واسطے جڑیاں سہولیات وہ سانوں دے رہے ہیں وہ حوالے دے نال اسی ایک پروگرام کر رہے ہیں. تو ساڈے اچے اچے پرونے جڑے نے اج ساڈے سٹوڈیوز دے وچ موجود نے رضوان علی پٹی صاحب. پٹی صاحب اسی تہانوں جی آیاں نوں کہنے ہاں
13: جی. بہت شکریہ جی تہاڈا بسرا صاحب.
12: تو کیسا لگ رہا ہے تمہیں ریڈیو پاکستان؟
13: الحمدللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. ہوں تو ریڈیو تمہیں پتا ہے ایک پہلے ہر گھر کی ضرورت سی, ہر گھر موجود ہوتا سی. تو ہوں تو ریڈیو کے نال جڑا تعلق ہے کوئی ختم دا ہوتا جا رہا ہے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان دی نادرا دی تے ریڈیو پاکستان دا ایک بڑا خوبصورت اشتراک ہے کہ حالے بھی 40% لوگ جڑے نے ریڈیو سنتے ہیں. تو اسی اپنی جڑی ساڈی نادرا دا جڑا کام ہے اس سینٹر کس طرح آندا ہے اسی انہوں ریڈیو دے ذریعے لوکاں نوں اپنی اگائی دینا چاہنے.
12: اچھا پٹی صاحب, اس تو پہلے کہ اسی اپنی گل بات نوں اگے توریے, میں تانوں ایک ہور گل دسنا چاہنا کہ ریڈیو پاکستان جڑا ہے وہ صرف 40% لوگوں تک نہیں جا رہا.
13: اچھا
12: اس تو زیادہ لوگ جڑے نے وہ ریڈیو پاکستان سنتے ہیں. اسی یہ بھی ایک ایپ انٹروڈیوس کروائیے جس طرح تہاڈی ایک ایپ ہے جہد بارے چی گل بات کریں گے. اپنے سننے والے نوں دساں گے کہ نادرا دی ایپ کی ہے. تہانوں میں دسنا کہ ساڈی جڑی ریڈیو پاکستان دی ایپ ہے, یہ پاکستان دے ریڈیو پاکستان دے جننے بھی سٹیشن نے مختلف شہراں دے وچ وہ سارے آندے نے, تے ساڈے سنن والے ہن پوری دنیا دے وچ پائے جاندے نے. تسی جتھے بھی بیٹھے ہو, جتھے ویب سٹریمنگ ہے, اوتھے تسی وہ ایپ جڑی ہے وہ دے راہیں تسی ریڈیو پاکستان لاہور دے, ریڈیو پاکستان اسلام آباد, مٹھی, گوہاٹ, پشاور, مطلب جتھے جتھے ریڈیو پاکستان ہے وہ دی آواز جڑی ہے وہ سارے سنن والے تک پہنچ دی.
13: ماشاء اللہ.
12: تے گل بات جڑی ہے انہوں اسی لے کے آنے ہیں نادرا وال. تے نادرا جڑا ہے جس طرح کہ اسی سب جاننے ہیں کہ اے ڈیٹا بیس جڑا ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے کہ کنے
13: جی بالکل
12: بندے جمے, کنے موئے, تے کنے آدی شادیاں ہو گئی, کنے
13: جی
12: طلاقاں ہو گئی. تے مینوں اے دسو کہ اے جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے یہ عمومی طور دے ساڈے خاص کر جڑے پنڈ نے یا دیہات نے اوتھے لوگوں نوں پتہ نہیں ہوندا کہ جدو بچہ جمیا ہے یا جمی ہے دھی رانی وہ اندراج جڑا ہے وہ کتھے کتھے اسی کروا سکنے
13: ہیں. یہ
12: تسی سانو ذرا وستار نال دسو, تفصیل نال ساڈے سنن والیاں نوں کہ اے جڑا اندراج ہے یہ کتھے کتھے ہوندا ہے تے نادرا دا ایدے وچ کی کردار ہے؟
13: جی بسرا صاحب بہت شکریہ. بسرا صاحب جس طرح جڑا نا سول رجسٹریشن سسٹم جڑا ہے کسی بھی ملک دا, نادرا نے مقامی گورنمنٹ دے نال ایک معاہدہ کیتا ہے اور اس معاہدہ دے تحت پنجاب بھر چ جنیاں 4600 یونین کونسلاں نے, میونسپل کمیٹیاں نے, اوتھے پیدائش, موت, طلاق تے شادی دا اندراج ہوندا ہے نادرا دے ذریعے.

रास्तों में कहीं तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
7: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is FM 101.
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सुनते रहिए FM 101 101।

0: उठा लो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबाव FM 101
2: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
3: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
4: फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
3: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
5: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
6: खानदानी मनसूबा बंदी, सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: पापा मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
4: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत की

0: बस आई पैदा होते हैं,
1: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
0: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
2: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
3: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
2: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
4: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
5: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: सुनते रहिए FM 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को।
4: सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: News headlines. रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाक चीन सदाबहार तदवीराती तआवुन पर मबनी शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है। चीन के सदर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म कल 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग से न्यूयॉर्क रवाना होंगे। आसमीन हज की मीना पहुंचने के साथ मनास के हज का आगाज हो गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ इंतहाई खुशगवार मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क्याम के 75 साल मुकम्मल होने के तनासिर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का अयादा किया कि पाक चीन सदाबहार तस्वीराती तआवुन पर मबनी शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी स्तून है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी समेत चीन के बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इजहार किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत, कौमी तरक्की और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और तआवुन खित्ते और इससे बाहर इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी अफहाम व तफहीम, एतमाद और तआवुन पर मबनी गैर मुतज़लज़ल रवायती दोस्ती का रिश्ता कायम है।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक चीन सदाबहार तदवीराती तआवुन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। चीन के सदर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अज़हा के मौके पर खसूसी ट्रेनें चलाना शुरू कर दी हैं। आज़मीन हज के मीना पहुंचने के साथ मनाज के हज का आगाज हो गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ इंतहाई खुशगवार मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क्याम के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में हुई। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का अदा किया कि पाक चीन सदाबहार तदवीराती तआवुन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी समेत चीन के बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की भरपूर हमायत का इजहार किया और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत, कौमी तरक्की और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुस्तकिल हमायत को सराहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और तआवुन खित्ते और इससे बाहर इस्तेहकाम का बायस बन रहे हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी अफहाम व तफहीम, एतमाद और तआवुन पर मबनी गैर मुतज़लज़ल रवायती दोस्ती का रिश्ता कायम है। उन्होंने कहा कि बैन अल-अक़वामी तब्दीलियों से कतअ नज़र चीन अपने हमसायों के साथ सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए इंतहाई मुखलिसाना किरदार अदा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब ली चियांग के साथ वफूद की सतह के मुज़ाकरात के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामला दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खलीजी खित्ते में जारी बहरान के बायस दुनिया इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। शहबाज शरीफ ने अमन के फरोग और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन ने करीबी रवाबत बरकरार रखने, तयशुदा मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने और दो तरफा शराकतदारी को अमली बामकसद और आला मेयार के तआवुन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के दरमियान आज बीजिंग में मुलाकात के दौरान हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और सियासी, इक्तिसादी, तजवीराती, सिक्योरिटी और अवामी रवाबत के शोबों में दो तरफा तआवुन में मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात की। इस मौके पर चीनी वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गर्म जोशी से मुसाफिया किया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आज़ाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। आपा, मैंने सुना है

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो।
5: मतवासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

अच्छा, बहुत सारे परदेशी जो हैं वो अपने घरों को आए होंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, अपने गांव में। बहुत सारे लोग जो हैं वो ओवरसीज से पाकिस्तानी आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अपने घरों में ईद मनाने के लिए, और बहुत सारे इस वक्त बॉर्डरों पर भी बैठे होंगे, मुल्क से बाहर भी होंगे। बहुत सारे इन शहरों के अंदर होते हुए भी कुछ लोग अपने इलाके में ईद मनाना पसंद नहीं करते, जाते नहीं हैं। बहुत सारी वजूहत होती हैं कि क्यों नहीं जाते, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। खैर, इस दफ़ा मेरा भी प्लान था कि मैं ना जाऊं, फिर मैंने सोचा कि भाई ईदैन पे तो कम से कम जाना चाहिए, है ना, ईदैन पे ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप ईदैन पे भी नहीं जाते ना, तो फिर कट्टी हो जाती रिश्तेदारों की आपसे। ये वाला गाना सुनाते हैं आपको, वापस आते हैं और फिर कॉल्स भी आपके प्रोग्राम में शामिल करूंगा जी। 051111001 इज द डायलिंग नंबर। मुझे कहते हैं आरजे केबी, आरजे केबी के साथ रहना है 2 बजे तक।

0: यूं तेरा मुस्कुराना और मुस्कुराते रहिएगा, चाहे मुश्किल में है या आसानी में है, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं मुस्कुराने से आधी जो आपकी मुश्किलात हैं वो हल हो जाती हैं, और अपने आप को डिप्रेस रखने से मसाइल में मज़ीद इजाफा हो जाता है। बाज़ औक़ात हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, चीज़ें बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनको बहुत बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं, और जब बहुत बड़ा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका डिप्रेशन भी बढ़ता रहता है। और अपने आप को हमें डाइवर्ट करना चाहिए, अपने आप को इर्द गिर्द ज़रूर अपने आप की डाइवर्जन रखनी चाहिए। और अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं और अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा उठते हैं, नींद पूरी करते हैं, सो यू विल बी फाइन। अगर आपको डिप्रेशन है तो आजकल हर किसी को डिप्रेशन है यार, क्यों ऐसा? हर शख्स को डिप्रेशन हुआ हुआ है, जिसके पास बहुत कुछ है उसको भी डिप्रेशन है, जिसके पास नहीं है उसको भी डिप्रेशन है। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या हाल है भैया जी आपके?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं मोहतरमा, क्या नाम है आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मैं लाहौर से रिमशा।
0: रिमशा बात कर रही हैं? अरे रिमशा जाग रही हो आज, क्या कर रही हो, छुरियां चाकू तेज कर रही हो?
1: समझ नहीं है दोबारा कहें।
0: मैं कह रहा हूँ छुरियां चाकू तेज करने की जिम्मेदारी दी है या क्या करना है, को पट्टे वट्टे लाने हैं? जानवर खरीद लिए?
1: पट्टे शट्टे भी नहीं डाले, छुरियां भी नहीं तेज की थी।
0: जानवर खरीद लिए?
1: नहीं।
0: अच्छा तो क्या जबा करना है?
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
1: अगले साल इंशाल्लाह।
0: अच्छा चले, खैर घर में भी कुछ लोग होते हैं जिनकी हलाल होती है।
1: आपकी आवाज कट रही है।
0: हाँ कट जाती है जब इंसान काटे ना फिर कट जाती है, है?
1: अब बोले।
0: हाँ मैं कह रहा हूँ निमिषा के क्या करने का इरादा ईद पे, चूड़ियां मुड़ियां ली हैं, कपड़े वपड़े लिए?
1: जी बिल्कुल।
0: क्या लिया?
1: आज मेरे लिए बहुत अच्छा इवेंट था। आज मैं बहुत खुश हूँ।
0: बताइए ना, हमें भी बताइए, हम भी खुश हों। हम भी खुश होना चाहते हैं, बताइए।
1: ठीक है, आज मेरा निकाह है।
0: अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मुबारक है, मुबारक दे मुबारक दे। ए, ये आपके लिए। अच्छा वो कहते हैं ना ताकते रहते हैं हम, ताकते रहे हो आप, कितने अरसे से ताक रहे थे?
1: काफी देर से, लेकिन आज ही हुए।
0: अच्छा हुआ भी मनपसंद शख्स है ना?
1: बिल्कुल।
0: लो जी भाई लुडियां पाओ जी, लुडियां पाओ फिर, है ना? आपके लिए तो आज बड़ा बाकी जबरदस्त डे है। और आप अच्छा निकाह करके भी आप रेडियो सुन रहे, मेहमान शेमान चले गए?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा कौन कौन आया था? कुड़ी ये तुम्हारे लिए। अच्छा चलो अभी रिमशा मैंने ना तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान को लुड्डी सुनानी है ये, और तुमने उठ के एक दफा लुड्डी डालनी है जरूर।
1: ठीक है।
0: अगर तुम नहीं डालोगी ना तो कवा काटे तुम्हें। हाँ
1: ठीक है।
0: टक टक की आवाज आनी चाहिए नीचे, जब सैंडल लगे ना तो टक टक की आवाज है। ठीक है। चलो लुड्डी डालो। ये लो जी। लो जी, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत बरकतें डाले रिमशा, बहुत खुश रहो आप अपने दूल्हे राजा के साथ, और जिंदगी का जो नया सफर है बहुत मुबारक हो। ये बहुत खुशी वाला सफर भी होता है और बहुत जिम्मेदारी वाला भी होता है, ठीक है? इसकी जिम्मेदारियों को समझना, और बहुत ही जिंदगी का कहना कि बहुत अहम फैसला होता है, इस पर आपकी लाइफ पूरी डिपेंड कर रही होती है कि आपने सही इंसान को सिलेक्ट किया है नहीं किया, या उसके साथ वाइब्स आपने अपनी आपको मैच हुई है आपकी क्या नहीं हुई, या होनी है नहीं होनी है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है या उसने आपको करना है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सा रिश्ता होता है। तो इसको आपने दुआ भी करनी है अल्लाह से कि अल्लाह आपको लिए आसानी करे।
1: कुछ मेरी पसंद है और कुछ मेरे बाबा की पसंद है।
0: उनकी नहीं है?
1: उनकी भी है, लेकिन मैंने अपने बाबा की पसंद की है, लेकिन वो भी कहते थे लेकिन वो एक बार हमने इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने राजी कर ही दिया था बाबा को।
0: हाय हाय हाय, मंडे तो मनाना आता है।
1: लेकिन इस बार मेरे बाबा नहीं थे, क्योंकि वो आज वैसे भी उनको 5 महीने हो चुके हैं दुनिया से रुखसत हुए हुए,
0: अल्लाह की मगफरत करे। अच्छा
1: वो नहीं है, लेकिन सिर्फ आज उनकी कमी मुझे महसूस हुई कि काश वो भी होते तो कितने खुश होते।
0: अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ना पहला, जो खातून की ज़िंदगी में पहला सरप्रस्त जो होता है ना, वो उसका वालिद होता है, और फिर जो दूसरा होता है वो उसका शौहर
1: जी
0: होता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बात तो सही है,
0: ठीक
1: बस
0: है।
1: बस मेरे पास आज नहीं थी आज, मैं बहुत बस वहां से थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई, और रोना आंखों में आंसू बहुत ज्यादा आए, क्योंकि कि सबके मैं देखती थी ना कि जब बाबा होते थे तो वो बेटियों के सिर पर हाथ रखते हैं, मैंने कहा मेरे बाबा होते तो मेरे सिर पर हाथ रखते।
0: चलें, कोई बात नहीं रिमशा, मेरा हाथ ले लो, ठीक है, छोटा सा ही है लेकिन ले लो।
1: ठीक है, नहीं, आप भी बहुत प्यारे हैं,
0: ओके,
1: भाई भी बहुत प्यारे होते हैं।
0: थैंक यू रिमशा, आपका बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे शर्म आ जाएगी, फिर मैं शर्माने लग जाऊंगा। बाय बाय, तारीफ नहीं करनी। जिस जिसका निकाह हुआ है जी, जिस जिसकी शादी हुई है आज, आज वैसे क्या था, मंडे था है ना, हाँ मंडे था, कल जिसकी हुई है उसको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन है मेरे साथ, कहाँ से?
1: कैसे
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: करूँ
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी मोहतरमा, आप सुनाइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप गुम थे, पता नहीं कहाँ गुम थे।
0: बस जब बस कभी कभी गुम होना चाहिए ना वैसे, है ना?
1: आहो, कदर बता रहे हो अपनी
0: हाँ, तो वैसे कदर बढ़ी है या कम हुई है?
1: है नहीं बड़ी है, बहुत बड़ी है, जब आप आ रहे थे तब भी बड़ी कदर थी आपकी, अब आप गायब हुए तो कुछ ज्यादा ही हो गई है
0: अच्छा, वाजी
1: ना।
0: वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं खैर, मैं अब आता रहूँगा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, और पिछला जो पहला मैंने संडे अपना फ्राइडे जो मैंने ऑफ किया था, वो तो खैर मैं रेडियो आके यहाँ से चला गया था, ऑन एयर ही नहीं आया था, वो एक बात हो गई थी बस, तो फिर मैं चला गया था, ठीक है। और दूसरा जो है वो, जब दूसरा दूसरा जो फ्राइडे था उसमें बस एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं बस इस वजह से नहीं आ सका, और फिर मैंने कहा चलो ना मंडे कर लेते हैं आज। तबीयत आज भी ठीक नहीं है ना, क्या करूं, फूंक मारो दूर से,
1: से लग रहा आपकी
0: हाँ फूंक मारो फूंक।
1: है ना, वैसे भी मैं 10वीं पढ़ रही थी, फारिग हुई थी पढ़ के।
0: चल
1: मैंने
0: ठीक है, तुम
1: रिमशा का सुना, रिमशा को बहुत बहुत बहुत मुबारक हो, रिमशा खुश रहो, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। अल्लाह ताला ये देखे अब उसके वालद नहीं है, कितना मिस कर रही है वालद को, जो नहीं होते ना फिर वो इस वक्त ऐसे मौकों पे इस कदर शदीद याद आते हैं ना, और
0: बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा,
1: अल्लाह ताला इसकी आगे वाली जिंदगी बहुत बेहतरीन और अच्छी
0: आमीन
1: करे
0: सुम्मा
1: इंशाल्लाह।
0: आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया
1: मुबारक
0: अनिला,
1: अच्छा,
0: थैंक यू।
1: और आज टॉपिक कोई नहीं
0: आज मैं कह रहा
1: जी,
0: तोड़ियां गल्ला करनी है, छोड़ो
1: नहीं
0: टॉपिक
1: तुमने
0: नो।
1: मोहतरमा के नाम को याद कर लिया
0: मैं सोचता रहा, जब तक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था तब तक मैं सोच रहा था, अरे खुर्रम इतना बूढ़ा तो नहीं है
1: समझ
0: तू।
1: गई जी
0: आपने भी कसम उठा रखी थी कि आज मैंने खुर्रम को बताना नहीं है ना?
1: इनको एक तरह से मेरी बातें सुन के याद आएगा, ये खुद ही बताएंगे मेरा नाम।
0: चलो खुश रहो नीला,
1: अच्छा
0: बहुत सारा
1: टॉपिक नहीं,
0: खाना,
1: कुछ नहीं, नहीं
0: बहुत सारा खाना,
1: जी
0: कच्चा गोश्त नहीं खाना, भून के खाना, नमक लगा के खाना, ठीक है,
1: ओ,
0: हाँ,
1: नहीं,
0: और कलेजी भी रखना, खुद ने सारी
1: नहीं
0: पकाते
1: कुमारी
0: पकाते
1: का
0: खा
1: कुछ
0: देना।
1: खाना तो जरूर होता है, हाँ नहीं शफा होती है इसमें, खाना चाहिए। और ये जो कहते हैं हम नहीं खाते हाई कुर्बानी के गोश्त में से, वो हमक आती है, ये होता है वो होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, ये तो बड़ा बाबरकत होता है और शफा होती है इसमें, जरूर खाना चाहिए,
0: चलो
1: और अल्लाह ताला सबकी कबूल करे जो जो कुर्बानियां दे रहे हैं,
0: आमीन।
1: और सबको हज मुबारक, सबको ईद मुबारक, आपको भी अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, हम आपको मिस करते हैं, और अल्लाह आपको सलामत रखे, और सब आने वालों के लिए बहुत ही दुआ, और आपके लिए थैंक यू सो मच,
0: थैंक
1: अल्लाह
0: यू नीला,
1: हाफिज।
0: बाबा टाटा, बाबा। ओके जी, मेरे साथ जूबिया है, और जूबिया मुझे सुन रही है और कहती है कि दोस्तों से जब लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए, दोस्तों से लड़ाई, दोस्तों के से लड़ाई जो है वो खैर नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी लेना तो जल्दी मान जाना चाहिए, उसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं और कोई बहुत ही दिल से आपका दोस्त है तो फिर उसके साथ लड़ाई अगर आपकी हो गई है तो लड़ाई जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया करें, और ये भी देखा करें कि दोस्त कितना सेक्रीफाइस करता है या करती है, और आप कितना सेक्रीफाइस करते हैं या नहीं करते, या कितना आपने उनको जो है वो इजाज़तनामा दे बख्शा है, और कितना जो है वो आप बर्मला हो जाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं भाई दोस्ती में, बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। संडी ना करो मुझे, मेरा एक दोस्त भी मुझसे नाराज है, रोज ही नाराज हो जाता है, और जब कभी मैं फिर ना गुफ्तगू करके दलाइल दे के मनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम गलत हो, तो फिर वो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं तो नाराज हूंगा। जब लाजवाब हो जाता है वो, फिर वो कहता है हाँ तो मेरी मर्जी, मैं तो नाराज हूंगा। लेकिन यार नाराजगी में भी ना बड़ा प्यार होता है इंसानों का, अब खासकर अपनों का, दोस्तों का बहुत प्यार होता है। ओके जनाब, जो लोग मुझे इस वक्त जो है वो सुन रहे हैं हॉस्पिटल से, उनके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं कि रब ताला आपको शिफा दे, आपको कोई अजीज है तो उसको रब ताला शिफा दे, बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर जो ड्यूटी वाले हजरात हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो लोग जो मरीज के साथ उसकी यादत कर रहे हैं या उसकी तीमारदारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। देखें कि वो अपनी ईदैन भी कुर्बान कर रहे हैं, तो रब ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियां लाए, और मेरी दुआ है कि रब ताला इस ईद के सदक़े उनके जितने भी अजीज़ हैं जिनके पास वो मौजूद हैं उनको अल्लाह सेहत दे, और सेहत कामला वाजला अता करे, उनको खुशियां अता करे, और कोशिश करें कि जो लोग होते हैं ना ऐसा कि हम हमारा दिल करता है कि हम कहीं ईद सेलिब्रेट करें, कुछ अच्छा करें, कुछ कुर्बानी दें या कहीं आगे बढ़ें, तो हॉस्पिटल ज़रूर जाया करें, और हॉस्पिटल्स वाले जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि मरीज़ों का बहुत ख्याल रखें, जो मरीज़ों के साथ आए हुए लोग उनकी तीमारदारी के लिए आए हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि वो अपनी ईदैन कुर्बान कर रहे हैं, परेशान हैं। हम सारे लोग तो चले ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं जो लोग ठीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ईदैन की खुशियाँ कुर्बान करते हैं अपने अजीज़ों के नाम करते हैं। उनसे मैं कहूँगा जी कि रब ताला ने आपको मौका दे रखा है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना लें। जब हॉस्पिटल्स के अंदर आप दूसरे शहरों के अंदर आके रह रहे हों जहाँ आपके लिए रहने की जगह ना हो, नहाने धोने मुंह धोने साफ़ सुथरा होने की जगह ना हो, आपको खाने पीने की जगह ना हो, सो कितना मुश्किल होता है, और अपने अजीज़ों को प्यारों को जो कुछ घर में हैं उनको जब आप छोड़ के आते हैं और उनको याद करते हैं तब भी बहुत मुश्किल होता है, तो रब ताला उन सभी लोगों के लिए आसानियाँ करें। लो जी नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन है कहाँ से? क्या हाल है इशमल? इशमल माँ सरा खैर दे, तासु खैर, अकबल खैर दे, नूर खैर दे, खादे खादे खादे, अख्तर दे मुबारक शाह, एडवांस अख्तर दे मुबारक शाह, डेरा डेरा मनाना, डेरा डेरा मनाना। हाँ मसर राजी, पुश्तू राजी, निम निम राजी, हाँ निम निम राजी, टोल ना राजी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आप सुनती है मेरा प्रोग्राम, रेगुलर सुनती है? अच्छा फर्स्ट टाइम सुना आपने, अरे वाह, तो आप क्यों जाग रही थी इस वक्त? मेरा नाम केबी है, आरजे केबी कहते हैं मुझे।
1: अच्छा, मुकम्मल नाम?
0: मुकम्मल नाम खुर्रम बेग, के फॉर के फॉर खुर्रम, बी फॉर बेग।
1: अच्छा, और आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जी, अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन लेकिन अभी आप लोगों की कॉल्स आ रही है ना, मैसेजेस आ रहे हैं, आपका फीडबैक आ रहा है, तो यकीन जाने मुझे लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच मेरी बहन, अपना ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया, बाय बाय। यार क्या डीले डीले गाने लगे, मैं ये वाला सुनाता हूँ आपको, ये लीजिए।

0: मैं गोश्त भंडारे
1: मिलने आयो शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन
0: पिया के घर बंडा लेके जाएंगे हम बड़े शौक से जाके उसकी गली में खड़े होंगे घर का दरवाजा बजाएंगे और इंतजार करेंगे कि पिया बाहर आए कभी जुल्फ को इधर से सिलाएंगे कभी जुल्फ को उधर से सिलाएंगे

0: ओके जनाब, मेरे साथ फेसबुक पे बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं। मैं जरा जल्दी जल्दी नाम शुरू शामिल कर दूं और उसके बाद फिर जो है वो आगे बढ़े। वक्त थोड़ा सा मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, उसकी रीजन ये है कि इट्स वेरी टफ टू डू अ शो टुडे, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जो है वो ज़रा देर तक साथ दे सकूँ। खैर, फजल महमूद मेरे साथ हैं जी, थैंक यू सो मच। रिजवान राजपूत मेरे साथ रावलपिंडी से, थैंक यू सो मच। राना पंजाबी है मेरे साथ जी, कैसर कहते हैं मेरा नाम कैसर है, मैं फैसलाबाद से हूँ, प्रोग्राम का बहुत मज़ा आ रहा है। अरे बहुत शुक्रिया राना, राना पंजाबी बहुत शुक्रिया। और रिजवान राजपूत हैं, सबको सलाम कह रहे हैं। नाजिया जुल्फिकार है मेरे साथ और वो कहती हैं आरजे के भी वेलकम फ्रॉम लाहौर। फेसबुक पे आप आ सकते हैं जी और कमेंट कर सकते हैं। एफएम 101 चैनल पाकिस्तान आपने सर्च करना है, आपको पेज मिल जाएगा, उसके नीचे आपने कमेंट करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है खुर्रम भाई, कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ।
0: अरे कमाल है, साजिदा क्या लिया है ईद के लिए, कौन से कलर का सूट लिया है, चूड़ियां मुड़ियां लिए?
1: हाँ जी, सूट लिया है पिंक और रेड।
0: पिंक और रेड,
1: कल मैंने लेने जाना
0: है जूते। अच्छा, पिंक और रेड आपने लिए हैं। पिंक दुपट्टा होगा, रेड आपके कपड़े होंगे। पिंक दुपट्टा होगा, अरे सुन लो, पिंक दुपट्टा है और रेड आपके कपड़े हैं, राइट?
1: हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
0: मेरी आवाज आ रही है, ए गोंडियो सुनो, मेरी आवाज आ रही है, आ रही है?
1: अच्छा,
0: अच्छा तो मुझे बताओ आपके जो कपड़े हैं वो रेड है और दुपट्टा आपका पिंक है, ऐसा ही है?
1: दुपट्टा रेड है और ट्राउजर भी रेड है, शर्ट पिंक है और रेड का है ये और शीशे लगे हैं।
0: तो शर्ट आपने ऐसी क्यों ली है?
1: वो वैसे
0: शर्ट भी रेड होनी चाहिए थी ना, सारा कुछ ही रेड रेड होना चाहिए था, साथ नीचे जूते भी रेड होने चाहिए, सैंडल्स लंबी लंबी पिन वाली।
1: ठीक हो गया भाई, सारा कुछ ही रेड होगा।
0: हाँ, पेंसिल वाली
1: रेड लेना, मैचिंग भी रेड करूंगी।
0: हाँ, जुराबे भी रेड लेनी है, लिपस्टिक भी रेड लगानी है। ठीक है,
1: ठीक है। और आपको एडवांस में जुम्बा
0: दिखाऊं? और नाक में नथली डालनी है
1: जी?
0: नाक में नथली डालोगी आप?
1: हाँ,
0: नोज पिन, जिसको नोज पिन कहते ना, वो भी रेड होनी चाहिए, वो भी रेड होनी चाहिए। ठीक है, आंखों के ऊपर जो शेड लगाते हैं ना लड़कियां, आंखें बंद करके ऊपर आंखों के ऊपर लगाती हैं, वो शेड भी रेड होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं रेड बकरा नहीं, असल में खून की ईद है ना, तो खूनो खून हो नजर आए आप। चूड़ियां भी आपकी रेड होनी चाहिए, वैसे
1: बिल्कुल रेड होनी चाहिए, सब कुछ रेड होगा,
0: सारा कुछ सुर्ख सुर्ख लालो लालो। और अगर अगर आपको कुछ चीज लाल ना मिली ना तो खून लगा लेना।
1: ठीक हो गया, और
0: ठीक है। चलो साजिदा अपना ख्याल रखो। आप गई थी निकाह पे?
1: गुलाब जामुन अकेली ना खा जाना सारा डब्बा, मेरे लिए भी रखना,
0: वरना ये लालो लाल तो कल इसने होना है ईद वाले दिन, आपको भी ना कि लालो लाल कर दे।
1: मुझे बुलाया था, मैं भी
0: उधर ही थी, रिमशा ने बुलाया था मुझे। अच्छा रिमशा, फिर पकड़ी गई, चलो मासी तो देखना कि लाल और लाल होने से जरा बचना, ठीक है, ज्यादा लाल चीजें अच्छी नहीं होती।
1: और रिमशा बहुत ज्यादा भारी का, और आज मेरा ख्याल शायद हज का दिन था, निकाह हुआ था।
0: आपने सलामी दी थी उसको? उसको सलामी दी है आपने? रिमशा को सलामी दी थी?
1: हेलो,
0: रिमशा को सलामी दी थी?
1: जी दी थी।
0: कितने पैसे दिए थे?
1: वो बताना नहीं है ना, सरप्राइज।
0: अच्छा, ऊपर नाम लिखा था अपना?
1: हाँ जी, मैंने नाम लिख कर पैक करके गिफ्ट दिया, और जो दिया पैसे वगैरह वो भी रिमशा को पता है ना रिमशा।
0: चलो चलो ठीक है, ओके रिमशा की दोस्त साजिदा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कौन है, कहाँ से है मेरे साथ? वालेकुम अस्सलाम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई रेडियो ऑफ करेगा तो मेरी बात सुने को।
2: जी जी सर, हो गया हो गया।
0: ये बात है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मुल्तान से अहमद रजा।
0: अहमद रजा साहब, क्या करते हैं अहमद भाई आप?
2: कुछ भी नहीं।
0: कुछ भी नहीं करते? अरे कमाल करते हैं।
2: बिल्कुल सारे।
0: हाँ, आजकल वैसे आजकल ना आने वाले दिनों में कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसे कमाने हैं आपने? पैसे अच्छे लगते हैं आपको? पैसे
2: मुझे तो अभी पैसा मिल जाए मैं चेंज लूंगा।
0: अच्छा किसी से मिले तो छीन लेंगे आप?
2: नहीं, करता है
0: अच्छा तो किसी से छीन लें आप? हाँ मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? उम्र क्या आपकी?
2: 19 साल
0: है मेरा बच्चा। दिमाग अपना साफ रखो, छीनोगे क्यों, कमाना चाहिए। बोलो मैं कमाऊंगा
2: इंशाल्लाह।
0: अच्छा चलो अल्लाह आपके लिए आसानी करे फिर। और कोई बात नहीं, आजकल नाबीना लोगों की जो इंटेलेक्ट है ना वो बहुत तेज होता है, इस्तेमाल करो अपना इंटेलेक्ट, ठीक है?
2: और बाकी आज तो मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, मुझे तो अभी पता चला है।
0: क्या पता चला?
2: मुबारकबाद दे रहे
0: हैं आपको। क्या पता चला?
2: मुबारकबाद।
0: अभी अभी क्या पता चला?
2: आज कोई भी अच्छा कोई खुशी का ये शादी का सहरा था जी, कोई कर दीजिए।
0: चलो ओके जी बाबा, थैंक यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आवाज बहुत दूर से आ रही है, जरा ऊंचा बोलिएगा।
3: सर क्या हाल है? ठीक है।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए। कौन साहब है, कहाँ से?
3: अब्दुल करीम अर्ज कर रहा हूँ। तरनौल से।
0: तरनौल से अब्दुल करीम, क्या करते हैं आप? ये मोबाइल कहाँ फेंक जाते हैं आप, बस बात करते करते?
3: अच्छा जी, चलो मैं नजदीक बोल रहा हूँ। मैंने अर्ज करनी है, लास्ट प्रोग्राम वैसे तो आपका माशाल्लाह 5-6 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, एक दो दफा दिन का प्रोग्राम भी सुना था।
0: अच्छा,
3: तो लास्ट प्रोग्राम मैंने सुना था 12 मार्च को।
0: अच्छा, तो मेरे प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगता है?
3: बन रहा था रमजान की वजह से 27 को आना था, जुम्मे को आप आए नहीं थे।
0: अच्छा वो वाले भाई हैं आप, ओके।
3: 2:07 पे मेरे लिए किसी ने कॉल की थी, 3 चीजों का टोट का बताया था, मैं सुन नहीं सका था ना।
0: अच्छा,
3: तो उसका कोई हल निकल सकता
0: है भाईजन? आपको मोरों का मसला है, मुझे दिमागी मसला है, मैं भूल जाता हूँ बातें।
3: सच बताओ ना मुझे आज, नहीं नहीं वो पता क्या मजाक मैंने वो मैं सदर नानी से कह के निकलवा लूँ। किसी कॉलर ने ना 2:07 पे आखिरी कॉलर मेरे नाम मैसेज का किया था, 3 चीजों का कोई टोट का बताया था, वो मैं सुन नहीं सका था।
0: अच्छा, मुझे तो याद नहीं है भाई, वैसे अगर कोई कॉलर अब मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने बताया नुस्खा, तो वो जरूर मुझे कॉल करें जी। इन भाई के लिए नुस्खा,
3: वो नंबर नहीं निकल सकता आखिरी कॉल का, 12:07 पे कॉल आई थी भाई जी
0: वो। अच्छा मैं टीम से बात करता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है?
3: चलो, रिक्वेस्ट करने वाली बात है, होगी मिल जाए तो
0: चले, ठीक
3: है। हमेशा की तरह अच्छा प्रोग्राम है, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके सर से अल्लाह मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती।
0: आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।

0: इजाजत अब ले ले, अब आप इजाजत ले ले।
1: अंसारी साहब वाह वाह वाह वाह वाह।
2: अंसारी साहब क्या कमाल के सिंगर हैं, और मैं उनसे एक हाथ ऊपर वाला सिंगर हूँ। दोनों सही सुरीले वैसे। मैं और अंसारी साहब अगर कॉम्बो बनाए ना, तो हम टू ब्रदर्स को पीछे छोड़ देंगे।

0: आपको गाना सुनाते हैं फलक शबीर की आवाज में, वापस आते हैं, मुझे आज के भी कहते हैं। है? फलक शबीर नहीं बोल रहे, चलें आपको पश्तो सुनाते हैं।
1: Copy.

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। 1:19 हैं और 26 मई है 2026 है। मुझे आज के भी कहते हैं, आपके साथ मैं हूँ 101 इंटरनेशनल, आप सुन रहे हैं। और मैंने फैसला किया है कि आपके साथ 10 मिनट का मजीद साथ होगा और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। तो आप मुझे कॉल कर रहे हैं 0511111001 के ऊपर। और आज जो है वो दिन बड़ा ख़ास है, उस तरह से ख़ास है कि कल से जो है वो ईद की तैयारियां बड़ी भरपूर और ज़ोर शोर से जो है वो जारी हो सारी होंगी। इस वक्त भी मंडियों के अंदर बड़ा रश है। जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि पूरा इस्लामाबाद में एक चहल पहल है, लोग जानवर ख़रीद रहे हैं, सौदेबाजियां चल रही हैं, और जो जानवर लाने वाले हैं वो कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं, जो लेने वाले हैं वो कहते हैं कि थोड़े कम पैसों में अगर कुर्बानी हो जाए तो बेहतर हो जाए। दोनों जो है वो गहमा गहमी में इस वक्त लगे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। अब्दुल नूर हाशमी मेरे साथ रिवाज गार्डन लाहौर से और मुझे आदाब कह रहे हैं, ईद उल अज़हा मुबारक कह रहे हैं। 4471 भी आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे आने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कॉलर एक ले लेते हैं जी, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉलर कुछ कॉलर को शामिल करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए हैं, 2 से 3 कॉलर जो है वो शामिल करूँगा और उसके बाद फिर जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। होपफुली जो है वो ये जो थोड़ा सा मेरा एक आपके साथ गैप बना है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम दोबारा से जो है वो रूटीन पर आ जाएंगे और बड़े अच्छे अच्छे शोज़ होंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
0: क्या हाल है हमीद गुल साहब, कैसे हैं
1: आप? ठीक हैं, खैरियत से?
0: अरे देखिए, आज मैंने कितना कितना बजा आपको पहचाना है।
1: अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैंने भी आपकी आवाज से मैं पहचान लेता हूँ। देखिए कोई तस्वीर तो आती नहीं है रेडियो पे। लेकिन आज आपने तस्वीर अच्छी लगाई है।
0: अच्छा, पुरानी है हमीद गुल साहब, बस जब ये अच्छे वक्तों की है। नहीं,
1: आज कोई ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं, कुछ और भी। मेरे नजर से एक लतीफा गुजरा
0: जी,
1: वो आजकल क्योंकि ईद आ रही है, मैं कह रहा हूँ नाथ को नाराज नहीं करना चाहिए। मेरी नजर से एक लतीफा गुजरा। लतीफा कुछ यूँ था कि साहब कह रहे थे कि सुबह सुबह मेरी अपनी बेगम से लड़ाई होगी। तो मैंने ये ठान लिया कि भाई अपने काम खुद करूंगा, अब इसके साथ बात नहीं करनी। और दोपहर को भूख लगी, 4-10 स्लाइस लिए, उस पे हरी चटनी लगाई और खा के आराम से एक कोने में बैठ गया।
0: अच्छा,
1: लेकिन कहने पिछले 1 घंटे से टीवी चला रही है, तो मैंने मेहंदी भी भोग के रखी थी, कहाँ गई? अभी भी आप कह रहे हैं हरी चटनी।
0: अच्छा।
1: वो ख्याल कीजिएगा ऐसा ना हो, ईद करीब करीब है, भगवान का ख्याल करें, वरना जिस ईद में कुर्बानी में गोश्त संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: हाँ वैसे ही है। अब अच्छा अमीर गुल साहब, पिछले कुछ 2-3 सालों से ना मैं बच ही जाता हूँ हमेशा। हाँ, पता नहीं क्यों बच जाता हूँ।
1: क्या करते हैं आप? बच जाते?
0: हाँ बच जाता हूँ, बचत हो जाती है, बचत हो जाती है। हाँ, हरी चटनी से। चलें अमीर गुल साहब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: कौन साहब है जी, कहाँ से?
1: सर जी मैं आपकी सपाती बात कर रहा
0: हूँ जी। अबासी साहब, कैसे मिजाज है आपके?
1: हाँ मिजाज अच्छे हैं।
0: तो भाई सब कुछ लिया है जानवर या नहीं लेना? अभी ईद की सुबह लेना है?
1: कल तक हो जाएगा,
0: कल तक ले लेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों की ना ये अप्रोच होती है कि वो सुबह नमाज से पहले जाके लेते हैं, कहते हैं उस वक्त सस्ते मिल जाते हैं, ये क्या सिनेरियो है?
1: सस्ते में की बड़ी बात नहीं है, असल में होता है जो कुछ किया कर खिदमत अच्छी तरह ना कर सके ना, तो ये आजादी
0: है।
1: लेट करके लेते हैं ना, इतना लेट नहीं लेते।
0: चलें, बहुत शुक्रिया आपका बासी साहब, अपना ख्याल रखें, बस मैं जाने लगा हूँ थोड़ी देर में।
1: तो चलें, अल्लाह सलामत रखे।
0: आमीन आमीन, थैंक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओके ओके, लो जी ज्यादा जाने का वक्त हुआ चाहता है। ये जो आपके साथ मेरा 1.5 घंटा गुजरा है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक दफ़ा फिर से आपके साथ मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ, बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का, जिन लोगों ने फेसबुक के ऊपर कमेंट किए, जिन लोगों ने 4471 के ऊपर कमेंट किए, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिनकी कॉल्स लग गई हैं उनका भी शुक्रिया, और जिनकी नहीं लगी लेकिन मिलाते रहे उनका भी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम होगा फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला, उसमें हम फुल जोबन से प्रोग्राम करेंगे और पुरानी मौज मस्तियों के सारे इकट्ठे हो जाइएगा इंशाल्लाह। जुम्मे को प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है और ईद के सेकंड डे से जो है वो फिर मैं हाज़िर हो जाऊंगा और हम जो कंबाइन शोज़ करते हैं वो बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। इस दफ़ा हम आरजेस ने ना बड़ी गपशप लगाई आपस में कि यार अपनी अपनी स्लॉट्स में जाएंगे इकट्ठे होके, बड़ा अच्छा शो आपको मिलेगा और 101 बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आएगा। तो आपने ज़रूर सुनना है 101 की ट्रांसमिशन को, ईद इंजॉय करनी है और ईद कुर्मा पे खासकर आपने ये ख्याल रखना है कि कुर्बानी आपने ज़रूर देनी है। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप गोश्त जो है वो हासिल करें या किसी जानवर को ज़बह करें, कुर्बानी ये भी है कि आप अपनी को ख़ास कोई अजीज़ चीज़ किसी के लिए कुर्बान करते हैं तो वो भी कुर्बानी है। अगर आपको प्यास लगी हुई है और सामने कोई और प्यासा आ जाता है और अपना गिलास आप उसको देते हैं और आप बाद में पीते हैं तो ये भी कुर्बानी है। अगर आप किसी को रास्ता दे देते हैं तो ये भी कुर्बानी है। अगर आपकी गाड़ी चला रहे हैं और आप रुक जाते हैं, किसी को कहते हैं कि तुम गुजर जाओ, तो ये भी कुर्बानी है। अपना हक अगर आप थोड़ा सा भी किसी के लिए छोड़ते हैं और किसी को इसलिए देते हैं कि आपको नेकी मिल जाए, तो ये भी कुर्बानी है। तो कुर्बानी आपने ज़रूर देनी है, कुर्बानी देने वाले बनिए, दुनिया आपके लिए कुर्बानियाँ देगी। इसी खूबसूरत सी बात के साथ आपसे जाना चाहूँगा। होपफुली आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है। अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी है, किसी के कान को, किसी के दिल को कोई बात गिरा गुजरी है, तो माफ़ी का खासगार हूँ। रब के हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफ़ी का खासगार हूँ। इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ, ख़ताओं का पुतला हूँ, ख़ताएँ सभी से सजद होती हैं, लेकिन रब माफ़ करने वाला है और वो अपने बंदे के अंदर सुन्नत अपनी डालता है। और अगर रब की सुन्नत है माफ़ करना, तो अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, माफ़ करना जानते हैं, तो आप एक अजीम इंसान हैं, आप रब की सुन्नत को पूरा करने, तो इसलिए माफ़ किया करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, बहुत सारे अजीज़ ऐसे होंगे जो आपसे खफा होंगे या आप उनसे खफा होंगे किसी न किसी वजह से, तो माफ़ कर दीजिए। बड़ी ईद के सदक़े बड़ा दिल रखिए और उनको माफ़ कीजिए, गले लगाइए और इस पूरी ईद को आप सेलिब्रेट कीजिए। तो आज के प्रोग्राम में गलती को सैफ हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूँ, दरगुजर फरमाइएगा। मुझे आरजे के भी कहते हैं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप मुझे कोई टॉपिक बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम खुर्रम बेग है, आप मुझे फेसबुक के ऊपर खुर्रम बेग लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप kb.beg लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा है और आने वाले प्रोग्राम्स में आप क्या चाहते हैं। केबी को दीजिए इजाजत। केबी साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बांदा।

پہ تاریخی ہے، مثالی ہے، اور پاکستان ایز اے پیس بروکر

जाए हम, हर घड़ी को जीते जाए हम, हर आड़ से लड़ते रहे।

आड़ से लड़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।

जवाब देगा?

जब तू आएगी, जब तू आएगी। 101 FM

0: 101 FM。
1: गजल दाग की गजल पेश कर रहा हूं। गजल किया तेरे वादे पे बार किया।